पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी, पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल्या।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

जय। कृपावन सुत हनुमान की जय। शिव महापति महादेव की जय। श्री रामापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम।

भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम नाम महाराज की। संत बड़े परमार्थी वेद धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाय यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ

0: रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। ये यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि यहां आस्था, समर्पण, साहस और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है।

हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन मार्गों से होते हुए शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक इस वर्ष की यात्रा भी विशेष उत्साह से अभी जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं के लिए जो है व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक जो है मिलकर शिव भक्तों की सेवा में जगह जगह पर लगे हुए हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना, सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय हो, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षणक्षण आपके साथ है, आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोता, आपको बताते चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। जावेद, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी, बहुत शुक्रिया। आज पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा की अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूँ और आपको बता दूं कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे शिव भक्तों के उत्साह के आगे मौसम भी यहाँ फीका पड़ गया है। कल जहाँ कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई, लेकिन मौसम की चुनौतियों को दरकिनार करते हुए श्रद्धालु लगातार जोश जज्बे के साथ यहाँ जम्मू के पहले आधार शिविर से रोजाना बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तैयारियां करते नजर भी आ रहे हैं और हर रोज यहाँ से रवाना भी हो रहे हैं और सही सलामत जो श्रद्धालु लगातार वापसी कर अपने घरों को भी लौट रहे हैं। पुरानी शहर राम मंदिर ट्रांजिट कैंप में विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों के ठहरने और खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था की गई।

0: स्थानीय लोग खुद साधु संतों का ख्याल रखते नजर आ रहे हैं। कल जैसा कि मैं राम मंदिर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स पर क्या कुछ हो रहा है, हमारी कोशिश होती है कि आप तक वो पहुंचाए और
1: जी
0: श्रोता वो सुने कि किस तरह से यहाँ जम्मू के जो आम नागरिक भी हैं किस तरह से इस तीर्थ यात्रा को लगातार अपना साथ दे रहे हैं। उसी संदर्भ में कल जैसा कि यहाँ राम मंदिर के ट्रांजिट कैंप में साधु संतों के खास तौर पर ठहरने और खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है।
1: जी
0: स्थानीय लोग खुद साधु संतों का ख्याल रखते नजर आ रहे हैं जिनमें परिवार सहित लोग शामिल हो रहे हैं जिससे जम्मू की अतिथि देवो भव की जो छवि है यानी मेहमानों को खास तौर पर ऊपर वाले भगवान की तरह देखना
1: जी
0: और उनकी सेवा करना ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें परिवार सहित लोग शामिल हो रहे हैं जिससे ये जम्मू वासियों का दिल खोल कर जो सेवा करना है उससे ये साफ जाहिर होता है किस तरह से यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ उसके अलावा गीता मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, सरस्वती महयाल सभा, हर तरफ प्रशासन और स्थानीय लोग और बाजार एसोसिएशन्स श्रद्धालुओं साधुओं संतों की सेवा करते नजर आ रहे हैं जिससे
1: जी
0: जो माहौल है बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है। और खास तौर पर इस दौरान जो कर्मचारी भी हैं जो इन ट्रांजिट कैंप्स पर बिजली पानी और साफ सफाई का खास ख्याल रखे हुए हैं वो भी साथ देकर आम लोगों के साथ जुड़कर और जो निजी संस्थाएं हैं वो उनके साथ मिलकर इस तीर्थ यात्रा के विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में ठहरे तीर्थ यात्रियों का ख्याल रखते नजर आ रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए कल आईजीपी जम्मू ने जून विश्वास जो है उन्होंने इतवार को सांबा जिले का दौरा किया।
1: जी
0: यहाँ आईजीपी ने जिला पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से तीर्थ यात्रियों के सिलसिले में उच्च स्तरीय समीक्षा की और समीक्षा में यात्रा मार्ग सुरक्षा संबंधी विभिन्न जो मामले हैं उनमें स्पेशल स्थलों पर तैनाती जो है उसको उसकी समीक्षा की गई क्योंकि जो बाहरी राज्यों से यहाँ जम्मू पहुंच रहे तीर्थ यात्री है
1: जी
0: लखनपुर के मुख्यद्वार से होते हुए वो यहाँ कठुआ सांबा और विजयपुर के विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में ठहराए गए हैं। और इस दौरान इस यात्रा मार्ग पर जो ये नेशनल हाईवे है इस पर जो व्यवस्था होनी चाहिए और विभिन्न जगहों पर किस तरह से सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है उसी पर ये समीक्षा की गई। उसमें आईजीपी जम्मू ने खुद अहम पड़ाव की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और समीक्षा बैठक में पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराना सर्वाधिक प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता को लेकर किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मतलब किसी भी तरह से कोई यात्रा की सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए
1: जी
0: और यात्रा को और सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि तीर्थ यात्रियों का आना जो है वो बआसानी यहाँ जम्मू की तरफ पहुंच सके। और जो विभिन्न तरीके से जो अलग अलग क्योंकि जो तीर्थ यात्रा है उसको एक साथ जम्मू नहीं भेजा जा रहा है जैसा मैंने कहा कि विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में उनको ठहराया जाता है ताकि जम्मू में जो तीर्थ यात्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें भगवती नगर ले जाया जाता है ताकि वो अपनी यात्रा की तैयारी कर ले और
1: जी
0: इस सिलसिले में और तीर्थ यात्रियों को फिर भेजा जाता है। इसी तरह से ये सारा सिलसिला एक पूरे अनुशासित तरीके से चल रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह से एक ही जगह पर जो मिसकम्युनिकेशन या जो व्यवस्था को लेकर फिर सवाल उठते हैं उसमें किस तरह से उसको बेहतर बनाया जाए तभी अलग अलग जगहों पर मुख्य द्वार लखनपुर से लेकर पूरे जम्मू तक अलग अलग ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं ताकि तीर्थ यात्रियों की जो रजिस्ट्रेशन है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और जब जब तक रजिस्ट्रेशन और उनकी डेट बाजाबता डेट जो तीर्थ यात्रा की होती है वो नहीं आ जाती है तब तक उन्हें ट्रांजिट कैंप्स और

0: विभिन्न जगहों में जगहों पर यहाँ जम्मू में भी पर्यटन स्थलों और यहाँ के विरासत और यहाँ की जो अलग अलग जगह है, जो ऐतिहासिक मंदिर है, उन्हें उस वक्फे के दौरान ले जाया जाता है ताकि तीर्थयात्रियों का वक्त भी बेहतरीन तरीके से यहाँ गुजरे और उनको अपने वक्त पर तीर्थ यात्रा कराई जाए। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि कल जम्मू के मशहूर जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ हृदय के रोग को देखते हैं, डॉक्टर सुशील ने यहाँ विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने राम मंदिर के ट्रांजिट कैंप्स में ही एक शिविर भी लगाया था, जहाँ उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े तीर्थयात्रियों को देखा और संतों को यात्रा साधुओं संतों संत साधुओं और विभिन्न जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए ये शिविर लगाया गया था ताकि यात्रा के वक्त हृदय की जो बीमारियां हैं, दिल की जो सुरक्षा है वो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि तमाम एडवाइजरीज और उसके अलावा योग पर खास तौर पर अमल किया जाना जरूरी है। डॉक्टर सुशील ने लोगों को किसी भी बीमारी में जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, अलग अलग बीमारियों में आज के जमाने में लोग लिप्त होते हैं, तो उन्होंने खास तौर पर सुरक्षा करने के लिए बहुत से मरीजों को देखा भी और ऐसे मरीजों के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित खान पान और तनाव कम करने के लिए योग और पानी, योग जरूरी है और उसके अलावा पानी पीते रहना उन्होंने तीर्थयात्रियों को कहा। और सभी जरूरी दवाइयां जो है वो यात्रा के दौरान साथ रखने की नसीहत भी की। तो अलग अलग जगहों पर जो जैसे मैंने कहा कि शिविर भी लगते हैं डॉक्टरों के, कल जैसा कि डॉक्टर सुशील जो है वो हृदय के बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ, उन्होंने भी शिविर लगाया था और तीर्थयात्रियों को विभिन्न नसीहतें और जो खास तौर पर हृदय की बीमारियों में मुब्तला है उनके लिए खासतौर पर उन्होंने एडवाइजरीज पर अमल करने की भी अपील की और खासतौर पर उनके खान पान और दूसरी जो दवाइयां हैं यात्रा के दौरान साथ रखने की भी नसीहत की। तो इस तरह से जम्मू में जो जो माहौल है वो एकदम यात्रियों के लिए अनुकूल है। राज्यों से, मुख्तलिफ राज्यों से जो देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं वो जरूर आए और यहाँ जिस तरह से अनुशासित तरीके से तीर्थ यात्रा चल रही है उसमें हिस्सा भी लें, लेकिन एडवाइजरीज और जो जो जिस तरह से अनुशासन बनाया गया है उसका खास ख्याल रखें और बेहतरीन अंदाज में यहाँ से जो तीर्थ यात्री है वो रोजाना यहाँ से निकल भी रहे हैं और ये यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। जी
1: धन्यवाद जावेद, विस्तार में जानकारी देने के लिए
0: बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओ, ये थे जावेद मेहराब, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जम्मू में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और स्थानीय नागरिक मिलकर जो है प्रशासन के साथ शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं और कोशिश यही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर जहाँ से भी जिस भी विभिन्न राज्य से यात्री यात्रा के लिए निकलते हैं उनको जो है पवित्र गुफा तक किसी भी किस्म के अड़चन का सामना ना करना पड़े, वो उनकी जो यात्रा है वो बआसानी से मुकम्मल हो पाए, यही सबकी कोशिश है और आकाशवाणी भी इसी कोशिश में लगा हुआ है। क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप में FM 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओ, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारीख पहलगाम से जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत शुक्रिया जुबैर। सबसे पहले प्रिय श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। आज 13 जुलाई की तारीख है और श्री बाबा अमरनाथ जी यात्रा का 11वां दिवस है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्र में मौसम खुशगवार है और अमरेश्वरी पर्वतमालाओं से उजली और कोमल धूप निकल रही है। भगवान शिव की भक्तों की ये आस्था से पूर्व यात्रा पूरे उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ सुचारू रूप से जारी है। आज सुबह 4 बजे नुनवर आधार

0: से हजारों का जत्था 16 किलोमीटर की दूरी तय करके चंदनवारी पहुंच चुका है, जबकि निजी हाउसों में ठहरे यात्री भी चंदनवारी पहुंच गए हैं। यहां श्रद्धालुओं की पंजीकरणी और प्रवेश की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। इसके पश्चात प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है।
1: जी
0: निर्धारित समय के बाद किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये एक खास सिक्योरिटी के रीजंस के तहत और एक डिसिप्लिन के तहत होता है। विशेष अनुमति पत्र प्राप्त करने के पश्चात यात्री फ्रिसलन, पुशुटा, जोजबल और नागाकोटी से होते हुए शिशनाग और पंचतरणी के ओर अपनी पदयात्रा आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जी
0: शिशनाग और पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के ओर रवाना हो चुके हैं और जल्द ही बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो इधर जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 7,754 यात्रियों पर मुश्तमिल 12वां जत्था कश्मीर घाटी के ओर रवाना हो चुका है। ये जत्था दोपहर के आसपास ट्रांजिट कैंप काजीगुंड पहुंचेगा, जहां से बालतर और पहलगाम मार्ग के लिए अलग अलग जत्थे रवाना किए जाते हैं। तो इसी बिलतरतीब इसी में पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 170 छोटी बड़ी वाहनों में 4,858 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना किया जाएगा। इस जत्थे में 3,603 पुरुष, 1,021 महिलाएं, 171 साधु, 56 साध्वियां और 7 बालक शामिल हैं। ये श्रद्धालु दोपहर तक पहलगाम पहुंच जाएंगे और रात्रि में नुनवन बेस कैंप में भजन, पूजन, अर्चना और दीगर धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात वगैरह विश्राम करेंगे।
1: जी
0: तो 57 दिनों की चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 10 दिवसों में ही 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जबकि बीती रात 24,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। दर्शन के विभिन्न और राज्यों से और क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की आमद का क्रम नित्यतन जारी है और पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष यात्रियों की संख्या में इजाफा की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब मौसम की संबित में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम के आसपास के क्षेत्र और संपूर्ण यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना बना हुआ है। इस वक्त कल दिन भर कहीं हल्की और कहीं तेज वर्षा भी हुई, ताहम इससे यात्रा के संचालन या ओझाई में कोई फर्क नहीं आई। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में पहलगाम से पवित्र गुफा तक दर्जे हरारत लगभग 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो दिन के समय 25 डिग्री तक पहुंच सकता है। सामान्य तौर पे आकाश में बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार भी है। तो यात्रा प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए हर महत्वपूर्ण स्थान पर उपस्थित है। यात्रा मार्ग पर दिशा निर्देश और मार्ग दर्शन के लिए जगह जगह साइन बोर्ड और सूचना पट लगे हुए हैं। दो विशाल आरजी बेस हॉस्पिटलों की अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सा के दल यात्रा मार्ग और शुरू में चिकित्सा सुविधाओं के साथ मौजूद है। ऊंचे पर्वत क्षेत्र जहां लगभग गाड़ी कोई मुश्किल सा सफर होता है, वहां पोनी एम्बुलेंस जो पिछले वर्ष भी मुतारिफ कराई गई थी, इंट्रोड्यूस कराई गई थी, और इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ होता है जो एक यात्री को जरूरत के वक्त जरूरत आता है। तो इसी तरीके से माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के लिए सफाई और स्वच्छता के खास ख्याल रखा गया है। यात्रा मार्ग और कैंपों में सफाई मित्रों की मुसलसल मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यात्रा को साफ, महफूज और स्वस्थ बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। जी जुबैर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक विस्तार में जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद
1: श्रोता, ये थे एस तारिक, पहलगाम से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक लगातार प्रशासन, स्थानीय नागरिक मिलकर, विभिन्न भागों के जो अधिकारी है वो मिलकर जो है शिव भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। कोशिश यही कि सभी तीर्थ यात्री को जो है आसानी हो और पूरी यात्रा के दौरान जो है दोनों मार्गों पर, बालतल मार्ग और पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर जो है जगह जगह पर आपके लिए सहायता के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं, मेडिकल काउंटर्स बनाए गए हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, हेल्पलाइन डेस्क और भी सेवाएं जो है आपके लिए उपस्थित रखी गई है। गर्ज यही है कि सभी तीर्थ यात्री शिव जी के दर्शन प्राप्त करने में उन्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हाँ, आपको ऊपरी क्षेत्र में जो है कठिन रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी प्रशासन की मुसलसल यही कोशिश है जितना हो सके तीर्थ यात्रियों के लिए आसानी मुमकिन हो पाए। जैसा कि तारिक भी बता रहे थे, मौसम अभी जो है पहलगाम में खुशगवार ही है और दोनों मार्गों पर जो है आज मौसम खुशगवार रहने की संभावना जताई गई है। आप बने रहिए आकाशवाणी की इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी की OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, इस वक्त गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहीम रिजवान से अपडेट्स लेते हैं। रिजवान, स्वागत करते हैं आपका।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी
0: जी।
1: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका और श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, बालतल मुखी मार्ग एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां मौसम बदलता रहता है, कभी तेज धूप एवं कभी भारी वर्षा होती है
0: जी।
1: आज बालतल के पूरे क्षेत्र में मौसम सुहाना है क्योंकि बीते दो दिनों के दौरान लगातार यहाँ वर्षा होती रही। खासकर बीती रात के दौरान भारी वर्षा हुई जिसके कारण यहाँ ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना लगता है एवं चारों ओर सुंदरता देखने को मिल रही है। ऐसे वातावरण में यात्रियों का पवित्र गुफा जाने का सिलसिला आज 11वीं रोज सुचारू रूप से जारी है एवं आज बालतल बेस कैंप से सुबह सवेरे 11,127 यात्री बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। जिन श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से दुमेल एक्सेस कंट्रोल गेट पार किया उनमें 9,162 पुरुष, 1,592 महिलाएं, 140 बालक बालिका, 34 साधु, 22 साधियां, 5 ट्रांसजेंडर एवं 172 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं
0: जी।
1: बालतल बेस कैंप से पैदल डांडी एवं गोडू पर सवार होके रेल पथरी, ब्रारी मार्ग, वाई जंक्शन, काली मथा, संगम टाप, लोअर केव एवं अपर केव जैसे कठिन पड़ाव तय करके गुफा पहुंचकर यात्री माथा टेकते हैं, देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करके वापस बालतल की ओर रवाना हो रहे हैं। बीती रात देर गए तक 22,130 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। इन यात्रियों में 15,800 पुरुष, 5,660 महिलाएं, 401 बालक बालिका, 58 साधु, 5 साधियां, 60 ट्रांसजेंडर एवं 199 सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। व्यवस्थाओं के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो शिवलिंगम का दर्शन करके बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर इत्मीनान का इजहार किया और आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और इस पूरे माहौल जो वातावरण बालतल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है इसकी निगरानी बाजाबता तौर जिला के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और सिक्योरिटी के हवाले से पूरी निगरानी SSP गांधरबल सुधांशु धामा कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ विभागों के अधिकारियों के साथ साथ जिला के अफसरां भी आज बालतल बेस कैंप में मौजूद हैं और इस पूरे माहौल की निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जा रहा है। इसको लेकर अगर व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे तो व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान, विस्तार में जानकारी देने के लिए। तो ये थे रहीम रिजवान, गांधरबल से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि बता रहे थे कि मौसम जो है आज खुशगवार ही है क्योंकि बीती रात भी वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की वर्षा देखने को मिली। ताहाल आज जो है मौसम दोनों मार्गों पर खुश्क ही रहेगा, खुशगवार रहेगा। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताज़ा सूचना के अनुसार अभी तक जो है 9,092 तीर्थ यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 695 पुरुष, 239 महिलाएं, 7 बालक, 6 साधु, 45 सुरक्षा कर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 900 से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचार सुनते हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान

0: संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं।
3: पयामे सुबह
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
3: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
4: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।
3: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
4: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
3: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: जैसमीन, पयाम सुबह की नशरात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो से। दोबारा आपका खैर मकदम। ये वक्त है पयाम सुबह की नशरात में और कुछ आपसे साझा करने की। मैं हूँ आपका मेजबान फुरकान मजीद और मेरे साथ हैं
5: तस्लीम अख्तर। फुरकान, बात करेंगे तारीख के हवाले से आज के दिन की।
2: बिल्कुल सही, और ये वक्त है तारीख के हवालों का। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में अपने सामीन से ये बात शेयर करते हैं कि 1534 को आज ही के रोज़ यानी कि 13 जुलाई को ओटमन फौज ने फारस यानी पर्शिया में तबरेज पर कब्जा किया।
5: और आज ही के दिन यानी 13 जुलाई 1645 में एलेक्से रोमानोफ अपने वालिद माइकल की जगह रूस के हुक्मरान बने।
2: आज ही के रोज 1771 में बरतानिया यानी ब्रिटेन के मशहूर जेम्स कुक की जमीन के जनूबी निसफ कुर्रा यानी सदर्न हेमिस्फीयर की तारीखी तलाश 3 साल बाद खत्म हुई।
5: और आज ही के दिन 1772 में कैप्टन जेम्स कुक ने बहिर जनूब यानी साउथ सीज में अपना दूसरा सफर शुरू किया।
2: 1803 में आज ही के रोज राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 तलबा के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया।
5: और आज ही के दिन 1832 में अमेरिका में मिसिसिपी नदी के मुंबा का पता चला।
2: समीन, आज ही के रोज 1863 में न्यूयॉर्क में सिविल वॉर ड्राफ्ट के मुखालफिन के फसाद में 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।
5: और आज ही के दिन 1878 बर्लिन कांग्रेस ने बलकान के ममालिक को यूरोपीय ताकतों में तकसीम कर दिया।
2: आज ही के रोज 1887 को स्कॉटलैंड में दूसरा रेलवे ब्रिज शुरू हुआ जिसका आज भी इस्तेमाल हो रहा है।
5: 13 जुलाई यानी आज ही के दिन 1905 में कलकत्ता के बंगला हफ्ता रोज अखबार संजीवनी ने बरतानवी ब्रिटिश एशिया के बायकॉट की हिमायत की।
2: 1908 में आज ही के रोज लंदन में चौथे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का आगाज भी

0: हुआ।
1: और आज ही के दिन 1913 में सनतकार तुलसी प्रसाद खेतान की पैदाइश हुई।
0: समय 1918 में आज ही के रोज टोक्योमा यानी खलीज टोक्योमा में जापानी जंगी जहाज में धमाका हुआ जिसमें 500 अफराद हलाक हो गए।
1: और 1929 में मुजाहिद आजादी जितेंद्र नाथ बोस ने अपनी तारीखी धरना शुरू किया।
0: समय कुछ और भी तारीखी हवाले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ये नगमा।

बंगाल, मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में भी बाज़ जगहों पर 4 से 5 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। एजेंसी ने 18 जुलाई तक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वसी पैमाने पर बारिश की पेशगोई की है। इसी तारीख तक शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना के दूर दराज मकामात पर छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती और जनूबी जजीरा नुमा भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की शिद्दत में कमी आ जाने का इम्कान है। इधर मेघालय में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मशरकी उत्तर प्रदेश में कल बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ताज़ा फौजी हमले शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम ने बताया कि इस फौजी कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले गैर फौजी जहाज़ों के अमले के अलावा तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है। एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने बताया कि यह हमले कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए गए ताकि ईरानी फौजों को जवाबदेह बनाया जा सके। ये ताज़ा हमले खलीजी खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र किए गए हैं। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद ईरान के जनूबी शहरों जास्क, बंदर अब्बास और सिरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि आबनाए हुरमुज तिजारती जहाज़ों के लिए खुला है। उन्होंने ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान ताज़ा फौजी महाजराई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इस सिलसिले में शदीद इलाकाई और आलमी नतीजे के लिए खबरदार किया है। भारत ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय अमले के अरकान को ले जाते हुए एक कमर्शियल जहाज़ GFS गैलेक्सी पर हमले के बाद मगरबी एशिया खित्ते में कशीदगी को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए एक बार फिर कहा है। हमले की मजम्मत करते हुए वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि इस जहाज़ में सवार 11 भारतीय बाशिंदों में से अभी तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक बाशिंदे के लापता होने की खबर है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और वो तलाश और बचाव के काम में ओमान के हुक्काम के साथ सरगर्मी के साथ तालमेल रखे हुए है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक बार में आग लगने की वजह से कम 27 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 18 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि अस्पताल में 60 से ज्यादा लोग जेर इलाज हैं। ये आग बार में निस शब के दौरान लगी थी, जिसके बाद आग बुझाने वाला अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसने फंसे हुए कई लोगों को वहां से निकाला। थाईलैंड के वजीर आजम अनुतिन चरनो रिकोल ने मीडिया के अफराद को बताया कि 27 लाशें बरामद हुई हैं। आग लगने की तहकीकात की जा रही है। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बैंकॉक के चतुचाक जिले में ये एक मशहूर रेस्टोरेंट है। विंबलडन टेनिस में इटली के चोटी के खिलाड़ी यानिक सिनर ने कल रात लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में जर्मनी के अलेक्सेंडर ज़्वेरेव को 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से हराने के बाद मर्दों का सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। ये सिनर का विंबलडन टेनिस में लगातार दूसरा मर्दों का सिंगल्स का खिताब है। सिनर विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का खिताब कामयाबी के साथ दिफा करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज़ इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800-117-800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली का मानसून इजलास आज से शुरू हो गया है। ये इजलास इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान माली मामलात पर गौर किया जाएगा और रियासती हुकूमत तकरीबन 8 तरमीमी बिलों का भी ऐलान करेगी। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC के अमृत महोत्सव के दौरान सब्जी के नए सबयार्ड का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी की वजारत के मुताबिक इस प्रोग्राम के दौरान जनाब शाह एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाएंगे और APMC के अमृत महोत्सव के मौके पर तैयार की गई एक यादगारी किताब का इजरा करेंगे।

0: भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन अल खलीफा अस्सानी का कल इंतकाल हो गया था। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा आज कोई सरकारी तकरीब मुनक़द नहीं की जाएगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में इस खबर को अहमियत के साथ सफाए अव्वल पर शाया किया है कि ईरान के पासदाना ने इनकलाब के इंतबाह के बावजूद अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज उन सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा जो कानूनी तौर पर यहां से गुजरना चाहते हैं। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, अम्मान के साहिल पर तिजारती जहाज पर हमला। वजारत खारजा ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि कशीदगी को कम किया जाए और सिफारती बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की जाए।
0: आखिर में खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान हमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलावी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज़वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे।

वृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः

0: राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट्स लेकर क्या कुछ अपडेट्स है आइए सुनते हैं। तस्किन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया।
0: जी
1: हाईवे से ये कि हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है, बगैर किसी खलल के चल रहा है। और आज सुबह जो बालतल और पहलगाम के रास्ते जो 303 गाड़ियों का काफला था, उनमें जो बालतल का काफला है वो बानहाल पहुंच चुका है। बानहाल के लंगर ग्राउंड जो लांबर में रखा गया है, जहां पर ये नाश्ता करेंगे, जबकि पहलगाम के लिए सिर्फ रामबन में रोका जाता है, चंद्रकूट में। तो वहां पर भी जो 133 गाड़ियों में 170 गाड़ियों में जो पहलगाम से जाने वाले श्रद्धालु हैं, तो वो 4858 यात्रियों की कुल तैदाद थी उस पहलगाम वाले जो उसमें जो ग्रुप जा रहा है। तो कुल मिलाकर 303 गाड़ियों में 7754 यात्री रामबन में पहुंच चुके हैं और एक काफला इस वक्त बानहाल में है, एक चंद्रकूट में सुबह का नाश्ता वगैरह ले रहा है। इस दौरान जो कुल मिलाकर आज भगवती नगर से अगर कहेंगे तो आज तक जो भगवती नगर से रवाना किए गए जो रजिस्टर्ड यात्री हैं, उनकी तैदाद जो पुलिस कंट्रोल रूम का उनका जो इंफॉर्मेशन है, उनका जो इदादोशुमार है, फिगर्स है, तो उनके मुताबिक 87701 यात्री भगवती नगर से होकर अब तक कश्मीर की तरफ रवाना हुए हैं। तो इस दौरान जो मौसम है अब्र आलूद है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन मौसम जो है गुज़श्ता रात जो है बारिशें हुई हल्की हल्की, तो उस वजह से जो मजमुई तौर पर जो मौसम है बिल्कुल खुशगवार बना हुआ है। तो यानी कहेंगे कि सुबह और शाम के अवकात में सर्दी का एहसास हो रहा है, खासकर बानहाल के इलाकों में। इस दौरान जो कल जो कट ऑफ टाइमिंग हम बार बार बात करते हैं श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए कि 3 बजे के बाद आपको बानहाल से कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं है, और इसी तरह चंद्रकूट से 2 बजे के बाद कोई भी यात्रा गाड़ी या टूरिस्ट गाड़ी कश्मीर की तरफ छोड़ी नहीं जाती है। तो ऐसे ही जो वहां पर जो पाबंदी है इस ट्रैफिक पर, तो उसी के चलते कल जो ये जो रामबन का जो चंद्रकूट की इलाका है, चंद्रकूट में जो ये जो अमरनाथ यात्रियों के लिए जो वहां पर इंतजाम रखे गए, तो वहां पर कल जो थे 1700 से जायद यात्री और टूरिस्ट रोके रखे गए थे, जो 2 बजे के बाद रामबन पहुंचे, तो उनको वहां पर जो यात्रा निवास है वहां पर ठहराया गया था, जहां पर 5000 से जायद यात्रियों को ठहराने की जगह है। और इसी तरह बानहाल जो 2-3 बजे के बाद जो कट ऑफ टाइमिंग है कश्मीर की तरफ, किसी भी टूरिस्ट या यात्रा गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाती, तो वहां पर 377 यात्री जो है का कायम किया, और कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा यात्रियों को आज सुबह जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता है तो उसमें उनको मतलब यात्रा जो आज का फ्रेश यात्रा बैच थे उनसे पहले ही उनको वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। मजबूत तौर पर जो सिक्योरिटी का जो सेटअप रहता है, तो उसी वजह से इनके लिए जो 2 बजे और 3 बजे के बाद की जो पाबंदियां हैं कश्मीर में जाने के लिए, इसके लिए सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि जो आरओपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टीज होती है, जो सुरक्षा के लिए होती है श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए या टूरिस्ट के लिए, उसको हटाया जाता है। इसलिए 3 बजे और 2 बजे की जो रिस्ट्रिक्शन है सख्ती से इस पर लागू अमल किया जा रहा है, और किसी भी गाड़ी को 2 बजे के बाद चंद्रकूट से कश्मीर की तरफ और 3 बजे के बाद बानहाल से कश्मीर की तरफ नहीं दिया चलने दिया जाता है, जिसमें टूरिस्ट होते हैं या जिसमें कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड यात्री होते हैं। फिलहाल जो ट्रैफिक चल रहा है अभी जो यात्रा के दोनों जो दोनों काफले हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, एक बानहाल में इस वक्त विश्राम करके वहां कर सुबह का जो नाश्ता ले रहे हैं, और इसी तरह जो बालतल वाला है पहलगाम वाला है सॉरी वो रामबन पहुंच चुका है, और बालतल वाला जो वो बानहाल पहुंच चुका है, और अभी कुछ वक्त के बाद इन्हें यहां से कश्मीर की तरफ रवाना किया जाएगा। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन, विस्तार में जानकारी देने के लिए। श्रोता, ये थे मोहम्मद तस्कीन, राष्ट्रीय राजमार्ग से अपडेट दे रहे थे। जैसा कि अभी बता रहे थे कि मौसम जो है आज नेशनल हाईवे का अबर आलूद ही रह सकता है, वक्फे वक्फे से वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताहम तीर्थ यात्रियों का ये जो काफिला है, डाउन कॉन्वॉय और अप कॉन्वॉय दोनों इस वक्त पूरे शदुमत के साथ, पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं, और बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने की जो उनकी चाह है वो इस वक्त उन्हें मौसम की चिंताएं एक तरफ करके या और भी कोई मुश्किल एक तरफ करके उन्हें आगे लिए जाती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आज दोनों मार्गों पर जो है मौसम खुशगवार ही रहने के चांसेस हैं। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज पहलगाम

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं।

और बादल के मार्ग से जो है दोनों रास्तों पर आज मौसम खुशगवार ही रह सकता है। ताहम ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का जो अंदाज़ा नहीं रहता है, कभी भी वर्षा हो सकती है। पहले ही आप सभी तीर्थ यात्री अपने आप को जो है तैयार करके रखें, अपने साथ विंड चीटर्स, अम्ब्रेला, वाटरप्रूफ बैग्स और भी जो चीज़ें हैं वो आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पहले अगर आप तैयार हैं तो इन चीज़ों का आप एहतमाम करें। ऊपरी क्षेत्र में कब वर्षा होगी इस बात का जो है अंदाज़ा नहीं रहता है, और जो भी प्रशासन द्वारा आपको जो है एडवाइजरीज आती हैं उनका आप पालन करते रहें। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 2603 तीर्थ यात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1816 पुरुष, 649 महिलाएं, 28 बालक, 21 साधु, 2 साध्वी, 2 ट्रांसजेंडर और 85 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। कुल मिलाकर 2603 तीर्थ यात्री जो है इस अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। और आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जो मुख्य भगवती नगर 20 कैंप से जो है 303 छोटे बड़े वाहनों में यात्रा का 12वां जत्था वादी की ओर रवाना किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 7754 तीर्थ यात्री शामिल है, जिनमें से 2896 तीर्थ यात्री बालतल के मार्ग से पवित्र गुफा की ओर रवाना किए जाएंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4858 तीर्थ यात्री शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, ताज़ा सूचना से मिली के अनुसार जो है 2603 तीर्थ यात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें 1816 पुरुष, 649 महिलाएं,

0: 28 बालक, 21 साधु, 2 साध्वी, 2 ट्रांसजेंडर और 85 सुरक्षाकर्मी शामिल है। कुल मिलाकर 2603 तीर्थयात्रियों ने अभी तक पवित्र गुफा पहुंचकर जो है शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 12वां जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया। 303 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 7754 तीर्थयात्री वादी की ओर रवा दवा है। इनमें से 2896 तीर्थयात्री बालटल के मार्ग से शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे, वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4858 तीर्थयात्री पवित्र गुफा पहुंचकर शिवजी के दर्शन प्राप्त करेंगे। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस यात्रा से जुड़े सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन कि आप प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे। 9:25 हो चुके हैं, आइए समाचार सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं मुबशिर रुफाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजीम रूहानी, साइंसी और सकाफती शनाख्त में है, और अब इस अजीम तहजीबी विरासत को जम्मू कश्मीर के नौजवानों की खुद इन्हिसारी और यूटी की तामीर के लिए मशाली राह बनाने का वक्त आ गया है। वो ललदेद लिटरेचर अवार्ड और डॉक्टर वैदिही तमन की तसनीफ ललदेद द मदर ऑफ कश्मीर की रस्म रोनमाई के सिलसिले में मुनक़दा एक तकरीब से खताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने साइंस और गहरे रूहानी अकदार में तवाजुन कायम करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साइंसदानों और रूहानियत के पेशवा दोनों की ज़रूरत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों को अपनी तहजीबी जड़ों से जोड़ना और उन्हें मकसद के साथ हदूद से आगे सोचने की तरगीब देना अदीबों की जिम्मेदारी है।
2: एक पत्रकार, लेखिका, विचारक के रूप में भक्ति परंपरा की महान कवित्री ललदेद के जीवन, दर्शन और चिंतन को अत्यंत संवेदनशीलता और गहनता के साथ उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। सदियों पहले रचे गए ललदेद के वाक आज भी मानव मन के गहनतम को स्पर्श करते हैं और हमें स्मरण कराते हैं कि सत्य, करुणा और साहस जैसे जीवन मूल्य कभी प्राचीन नहीं होते। डॉक्टर वैदेही जी की यह कृति केवल ललदेद को समर्पित श्रद्धांजलि नहीं है, मुझे लगता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्यों को समृद्ध करने वाला एक बहुत ही अमूल्य योगदान है।
1: तकरीब में उत्तराखंड के साबिक वज़ीर-आला तीरथ सिंह रावत, पद्मश्री डॉक्टर SP वर्मा और कई मुमताज अदबी शख्सियात के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। अमूरी नौजवान और खेलकूद की मरकजी वजारत ने मेरा युवा भारत के जरिए मुल्कगीर मुहिम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के दूसरे मरहले का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत 3 सतही फॉर्मेट में मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे, जिनमें 15 से 29 साल की उम्र के नौजवान हिस्सा ले सकते हैं। मुहिम के तहत पहले जिलाई सतह पर, बाद में रियासती और आखिर में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। वजारत के मुताबिक माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। महकमा इत्तलात और तालिकात आमा ने दुनिया भर के फिल्म साजों से जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में शिरकत के लिए फिल्में और एंट्रीज तलब की हैं। फिल्में 31 जुलाई 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। मुतलकीन से कहा गया है कि वह इस सिलसिले में मजीद जानकारी वेबसाइट www.iffjk.org से हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर फिल्म फेस्टिवल 2026 7 से 10 सितंबर तक SKICC श्रीनगर में मुनक़िद होगा, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर को सिनेमा, सकाफत और तख्लीकी तबादले के लिए एक मुथरिक मकाम के तौर पेश करना है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों बालटल और पहलगाम से आसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3,00,000 यात्रियों ने गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियस्ना 7,754 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 12वां जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से वादी की तरफ रवाना किया गया।

जिनमें से 2896 यात्री बालतल जबकि 4858 यात्री पहलगाम के रास्ते गुफा की तरफ सफर कर रहे हैं। इसी दौरान आज सुबह 8 बजे तक मजीद 2603 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। भारत ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर आज मुल्क भर में एक रोजा कौमी सोग का ऐलान किया है। मुल्क भर में तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगुं रहेगा और आज कोई सरकारी तफरीही तकरीब मुनक्कद नहीं की जाएगी। इधर वजारत खारजा के एक प्रेस बयान के मुताबिक पार्लिमानी और अकलियती अमूर के वजीर किरण रिजिजू कतर के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो भारत की तरफ से इजहार ताजियत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस रेडियो प्रोग्राम का 136वां शुमारा होगा। लोगों से कहा गया है कि वह अपनी आरा और तजावीज़ 24 जुलाई तक भेज सकते हैं। अवामी मसाइल पर मबनी आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज और कल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक फ़ोन नंबर 01942452019 पर हो रही है। आखिर में दर्जे हरारत पर एक नज़र। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.8 डिग्री सेल्सियस से, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नायको पांथा चौक से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स, आइए सुनते हैं। इमरान, स्वागत करते हैं आपका।
1: जी बहुत शुक्रिया। चूंकि अमरनाथ जी यात्रा 2026 जारी है और आज भी अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप पांथा चौक से रवाना किया गया है, वहीं इस ट्रांजिट कैंप में कल शाम को अमरनाथ जी यात्रियों के दो जत्थे यहां पे पहुंचे, जिन्होंने यहां पे नाइट स्टे किया, जिसमें मेल फीमेल और कुछ बच्चे और साधु साध्वी भी शामिल थी जो अमरनाथ जी यात्रा के दर्शन के लिए यहाँ श्रीनगर पहुंचे। और इस सिलसिले में उनका यहाँ इस ट्रांजिट कैंप में स्वागत किया गया। और साथ साथ आज भी जैसे मैंने कहा कि अमरनाथ जी यात्रियों को आज इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया है मामूल के मुताबिक। और इस दौरान जो पुलिस, आर्मी और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी डिप्लॉयमेंट और कॉन्वे के बीच में उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से रवाना किया गया, डिप्यूट किया गया। और ओवरऑल अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो है वो पीसफुल तरीके से जारी है और यहाँ खासकर श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं और यहां से उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जा रहा है। और यात्री यहां ट्रांजिट कैंप में तो बात करते हैं हमसे, हम उनसे सवालात पूछते हैं, खासकर उनका फीडबैक लेते हैं इंतजामिया की तरफ से, जो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए जो सुविधाएं रखी गई है, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं और हर तरह की जितनी भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस साल सुविधा रखी गई है अमरनाथ जी यात्रियों के लिए, उस पर हम यात्रियों से बात करें। और अब एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री बड़े खुश नजर आ रहे हैं और खासकर जो यहाँ

0: एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने जो यहाँ इंतजाम किए हैं, और जैसे कि हम पहले दिन से अपडेट कर रहे हैं कि उनके फीडबैक के अपार्ट अगर देखा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, खाने पीने के लंगर से लेके यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, या फिर यहाँ सैनिटेशन का निज़ाम है, या फिर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो श्रद्धालुओं के लिए या अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ पे रखी गई है। 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खिदमत दी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, सीसीटीवी कैमरास पूरे इस इर्द गिर्द इस ट्रांजिट कैंप में इंस्टॉल किए गए हैं ताकि पूरी मॉनिटरिंग यात्रियों पर की जाए, और साथ साथ प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं और अमरनाथ जी यात्रियों से मिल रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं और ओवरऑल उनसे अरेंजमेंट्स को लेके उनका उनसे सवालात या उनसे उनका फीडबैक हासिल कर रहे हैं। सो कुल मिला के आज के दिन तक जो अमरनाथ जी यात्री आज पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं, इंतहाई खुश असलूबी या एक पीसफुल मैनर में जो है हम देख रहे हैं कि यात्रा जारी है। वहीं यात्री जो है वो भी यात्रा को लेके अपने एक पॉजिटिव ख्यालात जो है शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, खासकर जो प्रशासन की तरफ से यहाँ अरेंजमेंट्स किए गए हैं या जो लोकल लोग या लोकल कम्युनिटी यहाँ पे है जो इस यात्रा में अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान विस्तार में जानकारी देने के लिए। श्रोता, ये थे इमरान नाई को पांथा चौक से अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है ट्रांजिट के पांथा चौक में मुख्तलिफ किस्म की सुविधाएँ जो है तीर्थ यात्रियों के लिए रखी गई है। जो भी अप कॉन्वॉय डाउन कॉन्वॉय जो आती है, जो वहाँ पर विश्राम करते हैं या वहाँ पर जो है उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रशासन द्वारा या लोकल नागरिक जो है वो उनमें जो है उनकी सेवा के लिए जो 200 घंटे रहते हैं, चाहे पर वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की बात हो, सुरक्षा की बात हो या मॉनिटरिंग की बात हो, ये सब चीज़ें जो है पांथा चौक ट्रांजिट कैप में तीर्थ यात्रियों के लिए आज तक रखी गई है। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जहाँ कहीं भी तीर्थ यात्री जा रहे हैं, जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जो है जगह जगह पर यात्रियों की सुरक्षा की जाए, उनकी सुविधाओं के लिए इकदाम उठाए जाए, उनकी आसानी के लिए जो है बहुत सारे इकदाम उठाए गए हैं। और भी अपडेट्स हमारे पास हैं, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आकाशवाणी की यही मुसलसल कोशिश है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें, साथ ही अपना

0: यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज। पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोतो, आपको याद दिलाते चले, आज प्रातः भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का 12वां जत्था वादी की ओर रवाना किया गया, जो 303 छोटे बड़े वाहनों में कुछ ही घंटों बाद काजीगुंड पहुंचने वाला है। 303 छोटे बड़े वाहनों में कुल मिलाकर 7,754 तीर्थयात्री घाटी की ओर रवाना किए गए, जिनमें से 2,896 तीर्थयात्री बालटल के मार्ग से पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। वहीं पहलगाम के प्राचीन मार्ग से 4,858 तीर्थयात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर 7,754 तीर्थयात्री घाटी की ओर रवाना दवा है, जिनमें से 5,383 पुरुष, 2,071 महिलाएं, 16 बालक, 222 साधु, 58 साध्वी, 4 ट्रांसजेंडर शामिल है। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 3,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए हैं। वे दोनों मार्गों पर जो है मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार आज मौसम अबरालूद ही रह सकता है, ताहम किसी भी वर्षा की कोई संभावना नहीं है। मौसम खुशगवार है, दोनों मार्गों पर तीर्थयात्री बड़े उत्साह के साथ इस वक्त पवित्र गुफा की ओर रवा दवा है। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, आपको बताते चले, आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्री अमरनाथ जी यात्रा का 12वां जत्था वादी की ओर रवाना किया गया। 303 छोटे बड़े वाहनों में 7754 तीर्थ यात्री घाटी की ओर रवा दवा है। कुछ ही घंटों बाद ये काफिला जो है काजीगुंड पहुंचने वाला है। आपको याद दिलाते चले, काजीगुंड के लांबर ग्राउंड से इस जत्थे का जो है विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक लाया जाता है, वहीं दूसरे हिस्से को जो है नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुंचाया जाता है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग से जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं, पहलगाम से होते हुए आप चंदनवाड़ी,

पिसू टॉप, जोजीबल, नागाकोटी, शेषनाग, महागुन स्टॉप, जहाँ पर जो है आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। बहुत ही ऊपरी क्षेत्र है ये। महागुन से होते हुए आप पंचतरणी, उसके बाद जो है आप संगम पहुँच जाते हैं। संगम एक ऐसा स्थान जहाँ पर दोनों मार्गों से चल रहे तीर्थयात्री एक साथ मिल जाते हैं। वहीं गांधरबल की अगर बात करें तो बालचल के रास्ते से जो है आप दुमेल से होते हुए प्रारी मार्ग और संगम

0: अमरनाथ जी यात्रा पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ जरूरी सूचना। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक का रास्ता ऊंचा नीचा है और चप्पल में स्लिप होने का खतरा रहता है, इसीलिए सफर ट्रेकिंग शूज पहनकर करें। दर्शन पर जाते हुए धीमी गति से चलें और किसी तरह का शॉर्टकट ना लें। वार्निंग नोटिस से मार्क की हुई किसी भी जगह पे ना रुके, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, बाबा बर्फानी के स्थल को हमें साफ रखना है, इसीलिए ऐसा कुछ ना करें जिससे वहां का वातावरण और सफर का पथ दूषित हो। प्लास्टिक के यूजेज पे सख्त मनाही है और ऐसा करने पे जुर्माना हो सकता है। यात्रा की सभी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करें। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भोले बाबा के दर्शन पे जाते हुए आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने में हमेशा तत्पर रहेगा, इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो अपनी फिटनेस पे भरपूर ध्यान दीजिए। इसके लिए रोज के 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, साथ ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और योगा करिए, ताकि सफर के दौरान आप फिजिकली फिट रहे। ध्यान रखिए कि सफर खाली पेट बिल्कुल ना करें, भोले का नाम लें और बिना जल्दबाजी किए सफर आराम से करिए, ताकि आपके शरीर को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। अमरनाथ यात्रा की किसी भी जानकारी के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन .com पे जाइए या फिर 14464 पे कॉल करिए।
1: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के अलावा आप हमें आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। यात्रा में सरकार द्वारा उठाए गए इकदामात से सभी तीर्थ यात्री बड़े ही खुश प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन ने कई एक यात्रियों से बात की है, आइए सुनते हैं उनके विचार क्या है।
1: बाबत है मेरा, अच्छे हैं गवर्नमेंट के, बाबा के दर्शन करने का पुनः फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम यही चाहते हैं भगवान से कि हर साल हमें बुलाएं दर्शन करने के लिए और कहीं ऐसे ही इंतजाम करते रहें बाबा भोलेनाथ हम सभी भक्तों के लिए। हर
2: हम एमपी से आए हैं, एमपी दमोह में और ग्राम एमलिया घाट नाम है। यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, भंडारा भी है, शासन की व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और हम लोग अमरनाथ के लिए जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ में 16 लोग हैं, बहुत अच्छा लगा और यात्रा में बहुत ही आनंद प्रदान।
3: बोलो शंकर भगवान,
4: बहुत मेरा नाम चंदू है, मेरा अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छा। मैं गुजराती बोल सकता हूँ, मैं अच्छा इंतजाम है, बराबर से पजामा से एकदम फर्स्ट क्लास से।
5: जिला दमोह, मेरा नाम महेंद्र सिंह लोधी है और हम यहाँ आए और भोले जी का मुझे बहुत अच्छा लगो, फिर साधन बहुत अच्छे साधन कर रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं और भंडारे वालों को हे भगवान ऐसे ही भरपूर घर रखने चाहिए। बोलो शंकर भगवान।
6: सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे से बातचीत करने आए। देखिए सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है बेगाना यात्री और मेरा अभी पैदल यात्रा चल रहा है, लगभग 6 महीना हो गया मेरा पैदल यात्रा का। अभी मैं कन्याकुमारी से आ रहा हूँ और कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ। कश्मीर अब यहाँ से मात्र लगभग 150 किलोमीटर के आसपास बचा है और मेरा यात्रा का पूरा मकसद ही है लोकल कल्चर ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना, यही है मेरा मेन मकसद।
7: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
8: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
7: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: ऑन द बेस्ट ब्यूटी ब्रांड्स ओनली एट द नाइट।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग से। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। श्रोताओं, इस वर्ष की यात्रा श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। आज प्रातः जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जो जत्था घाटी की ओर रवाना किया गया, कुछ ही पलों में वो काजीगुंड पहुंचने वाला है। काजीगुंड लांबर ग्राउंड से इस जत्थे का जो है विभाजन होता है। एक हिस्से को श्रीनगर ट्रांजिट कैंप पांथा चौक पहुंचाया जाएगा, वहीं दूसरे हिस्से को नुनवन बेस कैंप पहलगाम पहुँचाया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए जो है इस वर्ष भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन, सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय नागरिक मिलकर जो है तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, बहती नदियां और शिव भक्तों का अद्भुत वातावरण जो है तीर्थयात्रियों को एक अलग ही आध्यात्मिक संसार में ले जाती है। श्रोताओं, ये यात्रा केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं देती बल्कि प्राकृति के संरक्षण का संदेश भी देती है। हिमालय की ये पवित्र भूमि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए प्रत्येक यात्री का ये कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक तथा अन्य प्रदूषणकारी वस्तु का उपयोग ना करें, क्योंकि इस यात्रा को जो है गो ग्रीन का नारा जो लगाया गया है उसे आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। जगह जगह पर अगर आपको लग सकता है कि आप सरकार के प्रशासन के अधिकारी जो आपको मिलेंगे उनके साथ हर जगह आप कॉपरेट करें, जो भी एडवाइजरीज, जो भी दिशा निर्देश आपको प्रशासन द्वारा दिए गए उनका पालन करते रहे पूरी यात्रा के दौरान। और हाँ, एक बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि आप जो है अपना ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही करके रखिए। जिस भी स्टेट से आप आते हैं पहले ही आप एडवांस में अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, ताकि यहाँ आकर जो है आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब आप यहाँ पर विदाउट रजिस्ट्रेशन आते हैं तो आपको जगह जगह पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली लाइनों में रहना पड़ेगा, और मुमकिन है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन ना भी हो पाए। तो कोशिश करें जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं आप पहले ही अपना ऑनलाइन पंजीकरण करें, और उसके बाद जो है आप रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद अपना RFID कार्ड हासिल करें। किसी भी अनरजिस्टर्ड यात्री को जो है घाटी की ओर इजाज़त नहीं दी जाएगी, चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर भी बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपकी ये रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपको भारी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन है कि रजिस्ट्रेशन ना भी हो पाए। तो कोशिश करें कि पहले आप अपने ऑनलाइन पंजीकरण करें, और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही अपना RFID कार्ड हासिल करें। RFID कार्ड हासिल करने के बाद जो है दोनों मार्गों पर अपना RFID कार्ड पहने रखें, ताकि इस RFID कार्ड के जरिए जो है आप हर जगह ट्रैक हो पाए और जो भी सरकार द्वारा दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं उनका आप पालन करते रहे। उसमें जो है आपको एक समूह में यात्रा करना है, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की ओर नहीं जाना है, और कोशिश करें कि अपने साथ एक पन्नी रखें जिसमें आप अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख के रखें, ताकि आपको जो है आसानी से ट्रैक कर पाए। और हाँ, जब भी आप यात्रा के लिए निकले पोस्ट पेड सिम का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आपका प्रीपेड सिम नहीं चलेगा। पोस्ट पेड सिम साथ लाए, उससे जो है आपको आसानी होगी, और दोनों मार्गों पर आपको जो है जगह जगह पर प्रशासन द्वारा बनाए गए काउंटर्स मिलेंगे, चाहे वो हेल्पलाइन डेस्क हो, मेडिकल काउंटर्स हो, या रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे काउंटर्स हैं, उनसे आप राबिता कायम करें। या अगर आप किसी दुविधा से जूझ रहे, अगर आपको किसी मुश्किल का सामना है, आप हेल्पलाइन डेस्क पर जो है जाकर उनसे राबिता कायम करें, ताकि आपको जो है किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूरी यात्रा के दौरान आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहे, इससे जो है आपकी यात्रा आसानी से मुकम्मल हो पाएगी। ताज़ा सूचना के अनुसार जो है अभी तक 3000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। और आपको याद दिलाते चले, आज मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है आज दोनों मार्गों पर मौसम खुशगवार ही रहेगा, और ताहम बीच बीच में जो है हल्की वर्षा देखने को मिलेगी। ताहम इस वर्षा के दौरान जो है आप एहतियाती तदाबीर से काम लें, और हाँ, जब भी आप ऊपरी क्षेत्र की ओर यात्रा करने के लिए जाए नीचे ही कोशिश करें अगर आपको किसी भी किस्म की दुविधा का सामना है,
आप जो है कंसर्नड काउंटर के पास जाए और उनसे बात करें, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र में जाए, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जो है आपको ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऊपरी क्षेत्र में आपको बहुत सारी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, और इस बीच अगर आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े वहाँ पर जो है आपको दिक्कत हो सकती है। पहले ही नीचे जो डेजिग्नेटेड काउंटर्स हैं उनसे आप रबता कायम करें, उसके बाद ही आप ऊपरी क्षेत्र की ओर यात्रा के लिए निकले। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: जय बाबा बर्फानी।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: जय बाबा बर्फानी।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर। आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR एवं आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63

किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ।

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा आप हमें आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आपके साथ हमारी साथी शाही नारेशी जुड़ जाएगी। आप बने रहिए आकाशवाणी।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।
2: नमस्कार, आदाब। आकाशवाणी श्रीनगर के विशेष प्रसारण से मैं शाहिना रिजी आपकी सेवा में उपस्थित। जी हाँ, आप सभी का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत इस प्रसारण में। श्रीनगर के विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM पहलगाम 100.1 MHz पर, FM बालतल 103.7 MHz पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और हम आपकी सेवा में शाम 6 बजे तक उपस्थित रहेंगे। जी हाँ, इस विशेष प्रसारण से हम यात्रा पर आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं और आपकी सुखद यात्रा की प्रार्थना करते हैं। श्रोताओ, क्षण क्षण के अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। और अभी जो अपडेट हमारे पास आया है ये 12 बजे का है। 12 बजे तक जो है आपके साथ ये अपडेट, दर्शन अपडेट साझा करना चाहेंगे। तो 12 बजे तक 12,532 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें तो पुरुषों की संख्या रही है 8,669, महिलाएं 3,386, बालक 184, साधु 96, साध्वी 8, ट्रांसजेंडर 7 और सुरक्षा कर्मचारी 182। कुल मिलाकर संख्या बनती है आज दिन तक यानी दोपहर 12 बजे तक 12,532 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। तो सभी हमारी यही मनोकामना है सभी तीर्थ यात्रियों पर बाबा बर्फानी के जो है कृपा बनी रहे। और आप समाप्त कीजिए कुछ भजन।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM पहलगाम 100.1 MHz पर और FM बालतल 103.7 MHz पर DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। संशन के अपडेट्स आप तक पहुंचाना हमारा यही प्रयास रहता है। फिलहाल आपको अपडेट दे कि जो यात्रा है सुखद सफलता के साथ दोनों मार्गों से सुचारू रूप से जारी है। यात्री जो है प्रशासन द्वारा सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ यात्रा को जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, तो आप बने रहते हैं हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में और हम आपको पल पल की जो है पल पल के अपडेट से आगाह करते हैं। कुछ ही क्षणों में हम आपको आकाशवाणी दिल्ली लिए चलेंगे जहां से आप समाचार समाप्त करेंगे।

पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने ऐसा झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को

0: तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इनमें नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरि, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरि श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है, इसे इस महीने की 11 तारीख को शामिल किया गया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टर्स और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजेस पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक सामान्य बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent for winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held at Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. The Prime Minister further noted that it is equally commendable that in the last decade, Indian students have performed exceptionally well in the various editions of this platform. The government today informed that 4 new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the 6th indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month. A report.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted 3 indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build 7 next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation, these warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. In West Bengal, two new anti-crime laws have become effective from today. Governor R. N. Ravi has given his assent to the bill related to the control of anti-social activities. The State Assembly passed the two stringent anti-crime bills, the West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill and the West Bengal Maintenance of Public Order Amendment Bill. Under the West Bengal Public Safety and Control of Antisocial Activities Act 2026, a person involved in antisocial activities or one who is likely to engage in such activities in the future may be placed under preventive detention. Such a person can be detained for a maximum period of 1 year. Secretary in the Ministry of Panchayati Raj Vivek Bharadwaj today emphasized the need for collective action to make the country self-reliant in water management. He was addressing the inaugural session of National Level Training of Master Trainers Program on Water Budgeting and Water Security Planning by Gram Panchayats in New Delhi. Mr. Bharadwaj said meaningful change can be achieved when everyone comes together to work towards a common goal. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran State News Agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain and Ali al-Salem and Ahmad al-Jaber Air Bases in Kuwait. The IRGC claimed it damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems and radar infrastructure. The development comes after CENTCOM launched a major wave of offensive precision strikes across multiple locations in Iran yesterday. The Inter-Meteorological Department has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northeast India, West Bengal and Bihar during the next 2 to 3 days and isolated heavy falls in east Uttar Pradesh over 4 to 5 days. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex advanced 61 points to 77,631, while the Nifty added 5 points to 24,211 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
4: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें। विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
3: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा बर्फानी।
5: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा।

1026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। डीटीएच की आराधना सरस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक। श्रोताओं, हम आपको हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप बेझिझक अपने विचार, अनुभव और प्रश्न हमारे एकमात्र हेल्पलाइन के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 9596990954, 9596990954। आप इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए हमारे टीम के साथ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपके सुझावों को महत्व देते हैं ताकि हमारे प्रसारण को सक्षम बनाने में आप हमारे सहायक बने। और इसके अलावा हमारे पास जो है ईमेल आईडी भी है, ईमेल आप नोट कीजिए, akashvanibaltal@gmail.com, akashvanibaltal@gmail.com। और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर भी नोट कर सकते हैं, 1800-1807191, 1800-1807198। और श्रीनगर के लिए 1800-1807199, यानि 1800-1807199। जी हाँ, ये टोल फ्री नंबर है और जो हमने साझा किया आपके साथ ईमेल आईडी और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप बेझिझक हमारे साथ जो है संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो हमारे प्रसारण के लिए आप बोल सकते हैं कि हमें कहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है, हम अपने प्रसारण को कैसे अच्छे से चला सके और बना सके। तो हमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेझिझक हमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं, एक बार फिर कहेंगे, प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, आपके साथ साझा करेंगे अभी तक जो है एक बजे तक, आज एक बजे तक 18,142 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या 10,526, महिलाएं 7,084, बालक 206, साधु 117, साध्वी 8, ट्रांसजेंडर 7 और सिक्योरिटी फोर्स जो सुरक्षा कर्मचारी हमारे 194। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम यही कहेंगे कि एक बजे तक 18,142 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। तो संचरण के अपडेट्स लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं पूरे दिन। तो आपके साथ एक और अपडेट जो है साझा करना चाहेंगे श्रोताओं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। दोनों पारंपरिक मार्गों पर भक्तों के लिए स्वच्छता एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की जो है व्यवस्था की गई है। हमारी यही मनोकामना है सब तीर्थ यात्रियों के लिए कि उनकी तीर्थ यात्रा जो है सफल और मंगलमय हो।

जी हाँ, श्रोताओ, आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के संग। कुछ ही श्रेणों में आप तक जो है समाचार पहुंचेंगे, जो आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में। बस जरा सा इंतजार है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासिरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। वियतनाम में कश्ती के हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसद खाकी आज रात वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ईरान ने अपने फौजी ठिकानों पर अमरीका के हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर हमले किए हैं और खवातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर मेजबान इंग्लैंड भारत के साथ तारीखी वाहिद टेस्ट मैच में आज अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत के तायुन का अमल या किसी फर्द को गैर मुल्की करार देने की कार्रवाई मुनसिफाना होनी चाहिए और इसमें अदालती उसूलों से समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत आलिया ने 27 अफराद की दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत करते हुए यह बात कही जिन्हें आसाम में गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल ने गैर मुल्की करार दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच ने 27 केसों में गुवाहाटी हाईकोर्ट और गैर मुल्कियों से मुतालिक ट्राइब्यूनल के अहकाम को रद्द कर दिया। अदालत आलिया ने हिदायत दी है कि मुतालिका ट्राइब्यूनल की जानिब से इन केसों की दोबारा समाअत होने तक दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ डराने धमकाने की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से तश्कील दी गई खसूसी जांच टीम SIT को हिदायत दी है कि वो अपनी तहकीकात के बारे में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने उन दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किए हैं जिनमें अयोध्या राम मंदिर के लिए दिए गए एहतियात में मुबैना खुर्दबुर्द की तहकीकात CBI से कराने की अपील की गई है। इससे कबल उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को 3 अरकान पर मुश्तमिल SIT तश्कील दी थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत के दरख्वास्त गुजार संजीव कुमार अम्बाष्ठा की जानिब से एक उजरदारी दाखिल किए जाने के बाद तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक में मुतासरा झारखंड के वर्करों के मामले का नोटिस लिया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने रोजगार और मेहनत के सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो फौरी जरूरी कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब हमाजहत तरक्की से हर शहरी की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली यकीनी हो जाती है तो इससे मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार मिलती है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क इस बाइस तरगीब जज्बे के साथ भारत की सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया में मुनक्किदा 56वें बैन अल-अक़वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने का तमगा जीतने पर भारतीय दस्ते को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस कामयाबी से मुल्क की युवा शक्ति की बेपनाह सलाहियत की अक्कासी होती है। सरकार ने कहा है कि मुल्क में ही तैयार किए गए नए सिलसिले के 4 बहरी जंगी जहाजों को सिर्फ 1 महीने में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया है ताकि मुल्क के बहरी दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस सिलसिले के तहत INS महिंद्रा गिरी को इस महीने की 11 तारीख को बहरिया में शामिल किया गया है जो मुल्क में ही डिजाइन किया गया नीलगिरी जुमरे का स्टेल्थ फ्रिगेट है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय बहरिया ने पिछले महीने की 21 तारीख को मुल्क में ही तैयार किए गए 3 जंगी बहरी जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया था। इनमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे शामिल है। इन जंगी जहाजों को फजाई शिकन, जमीनी शिकन और आबदोज शिकन जंगी जहाज साजो सामान समेत मुख्तलिफ तरह के इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A नए सिलसिले के 7 गाइडेड मिसाइल जंगी बहरी जहाज बनाने का भारतीय बहरिया का जदीद तर्ज का स्टील्थ फ्रिगेट प्रोग्राम है। ये जंगी جہاز بحریہ کی کارروائی سے متعلق تمام شعبوں میں بھرپور انداز سے کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان جہازوں کو بیشتر ملکی وسائل سے تیار کیا گیا اور یہ آتم نربھر بھارت کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان سے ملک کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو تقویت ملے گی. ان جنگی جہازوں سے بحری سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا, بحری معیشت کو تقویت ملے گی اور ایک سرکردہ بحری طاقت کے طور پر بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی. دلی سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. ویتنام میں فوکوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے 15 بھارتی سیاحوں کے جسد خاکی کو ویتنام ایئر لائنز کی پرواز VN979 کے ذریعے آج ہو شی من شہر سے بھارت واپس لایا جائے گا. ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہو چی من شہر سے روانہ ہوگی اور توقع ہے کہ بھارتی وقت کے مطابق یہ پرواز رات 9:35 پر ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری, اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے. 63 کلومیٹر طویل 6 لین والا لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھارت کا دوسرا سب سے طویل سطح زمین سے اوپر کوریڈور ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا ایسا پہلا ایکسپریس وے بھی ہے جسے ایسی تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تعمیر کیا گیا ہے جو آٹومیٹڈ اور انٹیلیجنٹ مشینوں پر مبنی ہے. بہار میں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقدہ ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور فضائی خدمات کی اسکیم کی ستائش کی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسکیم کا آغاز ریاست

0: माहौल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का तीसरा मरहला हो रहा है। रियासत के विद्यालय डॉक्टर मोहन यादव ने इस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और 178 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की मजमुई सरमायेकारी के साथ 20 सनती यूनिटों का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक जमाने में मध्य प्रदेश को सिर्फ खेती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये रियासत ड्रोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज बना रही है। ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने उर्दुन, बहरेन और कुवैत में अमरीका के फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। उसने ईरान के फौजी ठिकानों पर अमरीका के हालिया हमलों के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमले किए हैं। ईरान की सरकारी खबर रसान एजेंसी के मुताबिक इस कार्रवाई में उर्दुन में प्रिंस हसन फिजाइया के अड्डे, बहरेन में शेख ईसा फिजाइया के अड्डे और कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर फिजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया है। ख्वातीन क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान पर वाहिद तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड आज दोपहर भारत के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारत को कुल 269 रन की सबकत हासिल थी और चाय के वक्त तक भारत ने अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर खत्म करने का ऐलान किया और इंग्लैंड को 457 रन का निशाना दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून बनी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियत और गैर मुल्की होने का तायुन मुनसिफाना, कानूनी और मुनासिब अमल के जरिए किया जाना चाहिए। अदालत ने 27 अफराद को गैर मुल्की करार देने के गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत आलिया ने राम जन्मभूमि मंदिर में अतियात की मुबीना खुर्दबुर्द की तहकीकात करने वाली SIT की कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस के रिसाव से मुतासरा झारखंड के कारकुनों के मामले का नोटिस लिया है और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: July and will operate every Saturday and Sunday. The MP Tech Growth Conclave 3.0 is being held in Bhopal, Madhya Pradesh. Chief Minister Dr. Mohan Yadav inaugurated the conclave and launched 20 industrial units involving a total investment of 178.7 crore rupees. The conclave aims to position Madhya Pradesh as a leading technology and industrial hub in the country. Addressing the conclave, the Chief Minister said India has become one of the fastest growing countries in the world over the last 12 years. He said Madhya Pradesh was once known only for farming, but the state now makes everything from drones to missiles. Dr. Yadav said after his visit to Barcelona last year, companies from Spain, the US and Canada invested 28 crore rupees in the state.
1: Madhya Pradesh has attracted more than 28,200 crore rupees in foreign direct investment, FDI, from companies based in Spain, Canada, the United States, the United Kingdom, Japan, South Korea, and several other countries. This is a matter of pride.
0: The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in the boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam will be repatriated from Ho Chi Minh City to India today by a Vietnam Airlines flight. The Indian Embassy in Vietnam, in a social media post, said the flight is scheduled to depart from Ho Chi Minh City at 6 p.m. local time and is expected to arrive at Mumbai's Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport at 9:35 p.m. Indian Standard Time. The embassy said the respective state governments have been requested to coordinate with the affected families for the onward journey of the mortal remains to their final destinations. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, has claimed responsibility for missile and drone strikes on U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait as part of its ongoing Eye for an Eye operation. The attacks were described as retaliation for recent U.S. strikes on Iranian military targets. According to Iran's state news agency, the operation targeted the Prince Hassan Air Base in Jordan, Sheikh Isa Air Base in Bahrain, and Al Salem and Ahmad al-Jaber air bases in Kuwait. The IRGC claimed damaged fuel depots, ammunition storage facilities, air defense systems, and radar infrastructure. It also warned against further U.S. military activity in the Strait of Hormuz. New Zealand actor Sam Neill, best known for his roles in Jurassic Park and The Piano, has died at the age of 78. His family said he died in Sydney today following a sudden and unexpected medical event. During a career spanning more than five decades, Neill earned international acclaim for his performances in both acclaimed dramas and major Hollywood films. The government today informed that four new generation indigenous naval platforms were inducted into the Indian Navy in just 1 month to strengthen the country's maritime defence. The latest addition is INS Mahendragiri, the sixth indigenously designed Nilgiri class stealth frigate, which was inducted on the 11th of this month.
2: On 21st of last month, the Indian Navy inducted three indigenously designed and built platforms, namely INS Dunagiri, INS Sansodhak and INS Agraya. These frigates are built under Project 17A for multi-mission roles, including anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare. Project 17A is the Indian Navy's advanced stealth frigate program to build seven next-generation guided missile warships equipped with advanced stealth features, enhanced survivability, a reducer radar signature and a high degree of automation. These warships are capable of undertaking the full spectrum of maritime operations across all dimensions of naval warfare. Built with a high indigenous content, these platforms reflect the vision of Atmanirbhar Bharat and strengthen the country's defense manufacturing ecosystem. With Pallavi Parmar, this is Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian contingent on winning gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026 held in Bucaramanga, Colombia. In a social media post, Mr. Modi said their feat reflects yet another example of the limitless potential of the nation's Yuva Shakti and their passion towards science and research. In women's cricket, England will resume their second innings at 130 for six in the historic one-off test at the Lord's against India this afternoon. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for seven at the stroke of tee, giving a target of 457 runs. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's. The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Bihar and Gangetic West Bengal today. The IMD said heavy rainfall conditions will also prevail over northeast, east Uttar Pradesh, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Uttarakhand during the next 2 to 3 days. Meanwhile, heat wave conditions are likely to prevail in isolated pockets over coastal Andhra Pradesh, while Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal will experience hot and humid weather conditions till tomorrow. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex added 20 points to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for six against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
5: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
6: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
3: ये नए समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई

0: करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुरमुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुरमुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें, प्रातः 7 बजे से हम शाम 6 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। दोनों पारंपरिक मार्गों पर भक्तों के लिए स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हमारी यही मनोकामना है सभी यात्रियों के लिए कि उनकी यात्रा सफल और मंगलमय हो।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। क्षण क्षण के अपडेट्स आप तक पहुंचाना हमारा यही प्रयास होता है और हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है उनका भी यही प्रयास होता है ताकि आपको अपडेट करें यात्रा के मामले में और यात्रियों के बारे में आपको अपडेट करें। तो अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जम्मू भगवती नगर से संवाददाता जावेद मेहराब। जी जावेद
1: जी, मॉनसून मौसम की सख्त गर्मी और उमस के बावजूद पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा का जो जोश और जज्बा लगातार जारी है। यहाँ लगातार तीर्थ यात्री जो है वो सड़क और रेल के माध्यम से बराबर पहुंच रहे हैं और ये जज्बा दिनों दिन बढ़ भी रहा है और लोग बराबर आ भी रहे हैं। हालांकि सड़क के माध्यम से जो द्वार लखनपुर का है वहां से तीर्थ यात्रियों को रोका भी जाता है, जहां विजयपुर, सांबा, कठुआ, इन जगहों पर ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं और यहां तीर्थ यात्रियों को कुछ देर रोका जाता है जब तक कि जम्मू में किसी तरह का रश ना बने, क्योंकि तीर्थ यात्रियों को अगर सीधे जम्मू ही आने दिया जाए तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रश जो है वो बन सकता है, जिसकी वजह से उसको हैंडल करने के लिए जो प्रशासन है उन्होंने वहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं। वहां पर सभी सुविधाओं की समीक्षा भी होती है। जो जम्मू जिले के अफसरान हैं, यहाँ अधिकारी हैं, वो बाजाबता वहां उन ट्रांजिट कैंप्स का दौरा भी करते हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनकी समीक्षा की जाती है। इसलिए वहां से जब यहाँ तीर्थ यात्रियों का रश थोड़ा कम होता है, रजिस्ट्रेशन बराबर हो जाती है, तो इसी तरह से ये सिलसिला इन डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान अलग अलग जगहों पर चलता है और फिर ये फाइनली भगवती नगर के आधार शिविर तक पहुंचता है। तो यहाँ श्रद्धालुओं का जो लगातार आना जम्मू शहर में एक मेले जैसा माहौल है और पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए जहां जो यात्री हैं वो उत्साहित भी हैं लेकिन सबर के साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। इन ट्रांजिट कैंप्स पर किसी तरह की कोई ह्यू एंड क्राई नहीं है, किसी तरह का कोई जल्द, ये उत्साहित जरूर है, जज्बा और जोश जरूर है, लेकिन बार बार प्रशासन की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया जाता है कि सब्र के साथ इंतजार करें अपनी बारी का। रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आपकी बारी आएगी आपको भगवती नगर के निवास स्थान पर ले जाके वहां से रवाना होगा जत्था। तो लगातार ये जत्थे भी बराबर जा रहे हैं तो वहीं सब्र के साथ इस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तीर्थ यात्री, जो एक अच्छी बात है। यहाँ ट्रांजिट कैंप्स में स्थानीय लोग प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर तीर्थ यात्रियों की सेवा में अपना योगदान भी दे रहे हैं। स्थानीय लोग
0: जी जी।
1: प्रशासन अपनी जगह है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी और साथ साथ जो लोग हैं वो भी अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। और एक तरफ जहां साधु संतों और साधवीज के साथ प्रशासन ने अलग ट्रांजिट कैंप्स बनाए हैं उनके लिए, क्योंकि उनका जो जिंदगी गुजारने का तरीका होता है उनका अलग तरीका होता है, इसीलिए ये किया गया है कि श्रद्धालु जो है, जो आम श्रद्धालु है वो अलग ट्रांजिट कैंप्स में रहेंगे और साधु संत और साधवीज वो अलग ट्रांजिट कैंप्स में रहेंगे। तो इसी को देखते हुए प्रशासन ने अलग ट्रांजिट कैंप्स बनाए हुए हैं, लेकिन खास तौर पर साधुओं के इन ट्रांजिट कैंप्स में श्रद्धालुओं के लिए जो लोग आते हैं, जो परिवार सहित जो यहाँ के स्थानीय लोग आते हैं वो साधुओं संतों के इंतजाम में भी अपना योगदान देते हैं और साथ साथ स्थानीय लोग परिवार सहित साधुओं से अपना आशीर्वाद भी लेते हैं। तो एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है जो हमने ट्रांजिट कैंप्स के दौरान देखा। अपनी परिवार सहित लोग सेवा में शामिल होते हैं, खाना खिलाने में, पानी देने में और जो व्यवस्थाएं होती है जैसे सुबह का नाश्ता है, शाम का जो डिनर है तो उसमें भी आम लोग भी परिवार सहित वहां अपना योगदान देते हैं और वहां इन साधुओं संतों से आशीर्वाद भी लेते नजर आते हैं। तो शहर के ट्रांजिट कैंप्स में शामिल राम मंदिर, अग्रवाल धर्मशाला, सरस्वती महवाल सभा, राम मंदिर, जो सरकारी कर्मचारी भी है वो भी अपनी ड्यूटी, जिसमें उनका खास तौर पर ध्यान होता है कि पानी

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालथल और एफएम पहलगाम के संग, जहां हमारा प्रयास यही होता है कि अपने श्रोताओं को अपडेट कराते रहे, वहां हमारे संवाददाता भी इसी कार्य में लगे रहते हैं ताकि हम और हमारे श्रोता और इसी ये अपडेट हमेशा इनके साथ साझा करते रहे हमारे संवाददाता। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहल गाम से एस तारिक जी। तारिक
1: हाँ शाहिदा जी, मैं बिल्कुल अपने जनों को ये कहकर इस अपने रिपोर्ट का आगाज करूंगा कि आज श्री बाबा अमरनाथ जी यात्रा का 13वां दिवस है और पहलगाम के प्राचीन मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्र में मौसम खुशगवार है और अमरेश्वरी पर्वतों मालाओं से उजले और कोमल धूप दिख रही है। भगवान शिव के भक्तों की ये आस्था से यात्रा पूरे आस्था उमंग और श्रद्धा के साथ चारों रूप से जारी है। बाबा के जंकारों में श्रद्धालु मस्त है। आज सुबह 4 बजे नुनादार शेवत से हजारों श्रद्धालुओं का जत्था 16 किलोमीटर की दूरी तय करके चंदनवाड़ी से होकर पंचतरणी और शीशनाग प्रवेश कर चुके हैं
0: जी।
1: इस प्रकार शीशनाग और पंचतरणी में रात्रि विश्राम करने वाले श्रद्धालु सुबह पोपटे निकलकर पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। जम्मू के भगवती नगर आधार शिवर से आए हुए 7,754 यात्रियों पर मुश्तमिल 12वां जत्था कश्मीर घाटी वारिद हो चुका है और ट्रांजिट कैब काजीगुंड से होते हुए बालसर और पहलगाम मार्ग पहुंच चुके हैं। इनमें पहलगाम के प्राचीन मार्ग के लिए 170 छोटे बड़े वाहनों में 4,858 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नुनादार शिवर पहुंच चुका है। इस जत्थे में 3,603 पुरुष, 1,021 महिलाएं, 171 साधु, 56 साधवियां और 7 बालक शामिल है और भी रात्रि गुजारेंगे। 57 दिनों की चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 10 दिनों में ही 2.5 लाख से अधिक यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जबकि बीते रात 24,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। देश के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की आमद का चरम निरंतर जारी है। आज रिपोर्ट फाइल करने तक यानी 2 बजे तक 18,142 यात्री दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, जबकि दर्शन का सिलसिला शाम गए तक जारी रहेगा। मौसम के संबंध में आपको सूचित कर दूं कि पहलगाम और इसके आसपास के क्षेत्र और संपूर्ण यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना है। मौसम विभाग के अनुसार वातावरण समय में पहलगाम पवित्र गुफा तक दर्जे हरारत लगभग 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज है। सामान्य तौर पे आकाश में बादल छाए रहे और एक या दो बार बारिश भी आकर चौकने के साथ बूंदाबांदी के आसार भी नहीं किए जा सकते हैं। यात्रा प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हर महत्वपूर्ण स्थान पर उपस्थित है। यात्रा मार्ग पर दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के लिए जगह जगह साइन बोर्ड और सूचना पथ लगाए गए हैं ताकि यात्रियों का सफर सफलता के साथ आगे बढ़े। जी शायद
0: जी तारिक, ये हम जानना चाहेंगे अभी अभी जो है केव के पास क्या टेम्परेचर है? अभी
1: केव के पास तकरीबन जी 25 डिग्री से आसपास ही है। थोड़ा सा जो ऊपर वाले पर्वत है उसमें जहाँ बिल्कुल केव है
0: जी,
1: कुछ 5-6 डिग्री कम हो जाती है या उसके बावजूद जो वहाँ भीड़ लगी होती है बहुत सारे लोगों की और जो सेवादारी लोग है वहाँ या सिक्योरिटी की वजह से, तो वो ह्यूमन टेम्परेचर के हिसाब से फिर वही तकरीबन 25 डिग्री तक हो जाता है।
0: तो
1: मौसम बिल्कुल स्पेशल है, मौसम बिल्कुल खुशगवार है और उसके साथ शाम को जो हमें मौसमियात के मौके में जो दिया गया है कि शायद शाम के वक्त कुछ हल्की सी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इस बूंदाबांदी से कोई भी रुकावट पैदा नहीं हो सकती है क्योंकि हम देख चुके हैं पिछले 4-5 दिन से बीच में जो बूंदाबांदी हुई है
0: जी,
1: उससे जो सफर है बहुत आसान सा हो गया था।
0: तो इसी खुशहाल जो है मौसम में, बहुत ही अच्छे मौसम में हमारे यात्री जो है आनंद लेते हुए नजर आते होंगे वहाँ पे कि वो इस मौसम को एंजॉय करते होंगे। तो तारिक आप
1: जी मैंने बार बार कहा था कि दरअसल जितनी भी यहाँ डिग्री टेम्परेचर हो वो हो, लेकिन यहाँ जो नमी होती है हवा में आजकल जो पहाड़ी क्षेत्र है जो हमारा ये मार्क है यात्रा मार्ग, इसमें हवाएं बहुत तेज चलती है, इसलिए जो हमारे जो शिव भगत होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, उतनी गर्मी उन्हें महसूस नहीं होती है जितनी मलाई इलाके हमारे शहरों में होती है, लेकिन वहाँ एक नमी सी होती है तो उससे वो बड़े आनंद लेते हुए अपना सफर जारी रखते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक आपका।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, ये थे पहलगाम से हमारे संवाददाता एस तारिक।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग डीटीएच या आराधना सर्विस न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वी विजोटिटी प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। श्रोताओ, जिंदगी का दूसरा नाम ही सफ़र है। कभी हम मंजिलों की तलाश में निकलते हैं तो कभी सिर्फ एक नए अनुभव के लिए, लेकिन याद रखिए कि हर सफ़र जो है सिर्फ एक कदम से शुरू नहीं होता बल्कि सही तैयारी से शुरू होता है। एक अच्छी यात्रा वही है जो सिर्फ सुहानी ही नहीं बल्कि सुरक्षित और व्यवस्थित भी हो। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ

बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में परेशानी का कारण बनती है। इसलिए चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों या किसी नए रास्ते पर जा रहे हो, कुछ बातों का नियमित रूप से ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिए।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और आपकी सेवा में अभी हम यही कहेंगे कि हमारा यही प्रयास रहता है आपकी सेवा में रह के कि हम आपको अपडेट करें और साथ साथ हमारे संवाददाता भी इस कार्य में जुड़े रहते हैं। तो अभी हमारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से इमरान नायको। जी इमरान
1: जी, बिल्कुल अमरनाथ जी यात्रा 2026 जो है वो बिल्कुल जारी है। जैसे कि आज भी हमने देखा कि यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों का एक और जत्था जो है वो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रीनगर पहुंच यहाँ कश्मीर वैली पहुंचा और इस दौरान यात्रियों का एक जत्था यहाँ श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में भी पहुंच चुका है और यहाँ पर वो नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह उन्हें अमरनाथ जी यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा, गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। इसके अलावा सुबह यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों के दो अलग अलग जत्थे जो है वो रवाना किए गए नुनवान बेस कैंप और बालतल की तरफ, पहलगाम की तरफ, दोनों रूट्स की तरफ अमरनाथ जी यात्री, जिसमें मर्द खवातीन और कुछ बच्चे और साधु साध्वी भी शामिल थी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों की जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में जो आमद है, जो अराइवल है, वो मुसलसल जारी है और यहाँ से अमरनाथ जी यात्रियों को बाद में अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सो आज के दिन को लेके भी आज यहाँ श्रीनगर में बिल्कुल मौसम साजगार है और इसके अलावा हल्की सी जो है सुबह बूंदाबांदी हुई थी, तहम ओवरऑल शहर में मौसम बिल्कुल साफ और साजगार है। और साथ ही यहाँ देखा जाए तो ट्रांजिट कैप में जो अरेंजमेंट्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से अमरनाथ यात्रियों के लिए

0: अहम रखी गई है और यात्रियों से हमारी बात मुसलसल हो रही है और ट्रांजिट कैब में जो फैसिलिटीज रखी गई है और उन फैसिलिटीज को लेके हम उनसे उनका फीडबैक हासिल करें पहले दिन से ही। लेकिन एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु या जितने भी यात्री जहाँ पहुंचे हैं वो अरेंजमेंट्स को लेके अपना एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, यानी कि वो यात्रियों के लिए जो लंगर यहाँ पे कायम किया गया है या बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है उनको लेके वो प्रशासन का बड़ा ही शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और तारीफें भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यात्रा को लेके ना सिर्फ श्रीनगर के इस ट्रांजिट कैंप में बल्कि पूरी वैली में जहाँ जहाँ ये ट्रांजिट कैंप दोनों रूट्स पे कायम किए गए हैं या लंगर्स लगाए गए हैं वहाँ को लेके जितने भी यात्री है वो अपना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका। तो श्रोताओं ये थे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप से इमरान नायको। क्षण क्षण के अपडेट्स आप की सेवा में हम बताते रहते हैं कि अपडेट्स क्या है। तो अभी जो हम आपके साथ अपडेट साझा करना चाहेंगे ये है 3 बजे तक जो है दर्शन अपडेट। तो 3 बजे तक 20,637 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। संख्या की बात करें तो संख्या पुरुषों की संख्या 14,486, महिलाएं 5,479, बालक 249, साधु 160, साध्वीज 14, ट्रांसजेंडर 7 और सुरक्षा कर्मचारी 242। तो इस तरह कुल संख्या बनी है 3 बजे तक 20,637 तीर्थयात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालथल और एफएम पहलगाम के संग। फोन लाइन पर अपडेट लेकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जी। तस्कीन साहब
1: जी, जी आज आफ्टरनून के ये जो हाईवे रिलेटेड जो अपडेट्स है उसको लेकर हम हाजिर हैं। तो अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा का सुबह जो काफले हैं वो कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। सुबह करीब 12 बजे 12:30 के आसपास दोनों जो बालथल और पहलगाम के रास्ते श्री अमरनाथ गुफा की तरफ जाने वाले जो श्रद्धालु थे आज, तो उनकी जो गाड़ियां थी 303 तो बहुत बड़ा काफला था। आज तो उन्हें करीबन 12 और 12:30 के दरमियान यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर की तरफ रवाना किया गया, जबकि जो वापसी पर श्री अमरनाथ यात्री जो आ रहे थे तो उनकी भी दोनों जो काफले हैं, पहला जो बालथल से जो वापस आता है तो उनका थोड़ा मंजिल दूर होती है तो वो आखिर से आते हैं, तो वो 3 बजे के आसपास यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हुए और जम्मू की तरफ ये ट्रैफिक इनका बढ़ रहा है, जबकि पहलगाम का जो नजदीक होता है थोड़ा बहुत ताखिर से निकलता है कश्मीर से, तो वो 2 बजे के आसपास यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर उधमपुर की तरफ बढ़ रहा है, आगे ये जम्मू अपनी जो मंजिल है इनकी भगवती नगर तो वहां पहुंचा जाता है। इस दौरान जो मौसमी सूरत-ए-हाल है वो सुबह से ही अबरालूद बनी हुई है पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में
0: जी।
1: बादल जो है सुबह से ही छाए हुए हैं जिसकी वजह से जो मौसम है मजमू तौर पर खुशगवार है और हवाएं जो है हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। तो कल का हम कहेंगे कि कल जो यहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ था, कल के जो यात्री 2 बजे के बाद जो हम बार बार अपने श्रोताओं को कहते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं श्री अमरनाथ यात्रियों पर और टूरिस्ट्स पर जो कश्मीर आना चाहते हैं उन्हें 2 बजे के बाद चंद्रकूट के रामबन इलाके से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होती है कश्मीर की तरफ। इसी तरह जो बानहाल में इन्हें 3 बजे के बाद बानहाल काजीगुंड टनल क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाती कश्मीर की तरफ। तो इस तरह जो रोजाना जो ये जो कट ऑफ टाइमिंग रखी गई है 2 बजे रामबन से और 3 बजे बनिहाल से, तो उसमें उसकी वजह से जो रोजाना यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हजारों की तादाद में यात्री पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो कल यहाँ पर रोके गए थे तो करीबन 2000 से ज्यादा यात्री थे रामबन में, करीबन 1700 और 300 से जायद 400 के करीब या बानहाल में भी रोके गए थे, तो उन्हें भी आज सुबह जो है पहले उनको निकाला गया, उसके बाद जो श्री अमरनाथ यात्रा का जो ताजा बैच आज का था जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ आने वाला तो उसे फिर कश्मीर की तरफ निकाला गया। तो फिलहाल जो ट्रैफिक चल रहा है जो मामूल का ट्रैफिक हाईवे पर होता है तो उसमें जो 11:30 बजे बाद काजीगुंड से जम्मू की तरफ जो पैसेंजर ट्रैफिक होता है उसे चलने की इजाजत दी जाती है तो वो इसको बढ़ रहा है आगे की तरफ। इसी तरह जो ट्रक्स को भी एक तरफ से छोड़ा जाता है यात्रा के दिनों के पेश नजर इन्हें 1-way कर दिया गया है, नहीं तो ट्रक जो है दोनों तरफ से चलते थे मुसाफिर गाड़ियों की तरह, लेकिन यात्रा की वजह से इन्हें एक तरफ से ही कर दिया गया है और अल्टरनेट डे पर इनको चलाया जाता है, यानी आज कश्मीर से ट्रक जो है वो जम्मू की तरफ जा रहे हैं और शाम तक इनकी जो मूवमेंट है इनका जो ट्रैफिक का जो निजाम है चलता रहेगा, उसके बाद इन्हें रोका जाएगा। तो जम्मू से जो ट्रैफिक आता है वो भी सुबह 7 बजे से निकला है तो उसका भी इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है और गाड़ियां जो है हजारों की तादाद में मुसाफिर गाड़ियां जिसमें टूरिस्ट भी होते हैं अमृतसर यात्री भी होते हैं वो दोनों ने अपनी अपनी मंजिलों की तरफ कश्मीर से जम्मू और जम्मू से कश्मीर का सफर किया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तस्कीन साहब आपका। तो श्रोताओ ये थे रामबन से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। एक ज़रूरी सूचना उन सभी भक्तों के लिए जो अभी यात्रा की योजना बना रहे हैं, यात्रा पर निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। बिना वैलिड परमिट के यात्रा की अनुमति नहीं है। नियमित और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें।

श्रोताओं जुड़े हुए हैं आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी 2026 के साथ। श्रोताओं, खराब मौसम या रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट होने पर कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और ऑफिशियल जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। इसके अलावा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन लगातार यात्रियों को जरूरी जानकारी और दिशा निर्देश दे रही है। इस कड़ी में श्रीनगर में डिजिटल होर्डिंग के जरिए भी यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस प्रदर्शित की जा रही है। आइए इन जरूरी निर्देशों पर एक नज़र डालें। जम्मू और कश्मीर के लिए रवाना होने से पहले एडवांस रजिस्ट्रेशन जरूरी करवाएं। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनसे अनुरोध है कि अपने अलॉटेड टर्न और ट्रैवल डेट का इंतज़ार करें। रजिस्टर्ड यात्री सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन में दिए तारीख पर यात्रा करें। बिना रजिस्ट्रेशन के जम्मू और कश्मीर पहुंच चुके यात्रियों से भी निवेदन है कि वे धीरज रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, क्षण क्षण के अपडेट्स लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं और हमारे संवाददाता भी इसमें बहुत ही साथ दे रहे हैं और आप तक अपडेट पहुंचाते हैं। तो अभी हमारी फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं बालतल से रहीम रिजवान। जी रिजवान साहब
1: जी, बिल्कुल हम अपने श्रोताओं तक पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं और इस वक्त मैं बालतल बेस कैंप में मौजूद हूं, जहां बालतल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालु हर हर महादेव एवं पवित्र नाथ करते हुए गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं और आज सुबह रवाना हुए हैं और शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचे। तो हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं जो अयोध्या से हैं, अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, इन बाबा से बात करेंगे और क्या कामनाएं लेकर और क्या मुरादें लेकर ये गुफा जा रहे हैं। आदाब।
2: जय शंकर।
1: कहाँ से आप?
2: हम अयोध्या जी श्री नारायण आश्रम वासुदेव घाट अयोध्या, नाम राघवानंद गिरी।
1: तो आप पवित्र गुफा जा रहे हैं?
2: जी पवित्र गुफा जा रहे हैं और यहाँ अभी आए हैं। देखिये सफाई उफाई बहुत अच्छा व्यवस्था है और 10 साल पहले आए थे उसे बहुत अच्छी सुंदर है, हर व्यवस्था है, सरकार से पुलिस का भी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रभु सफाई भी बहुत सुंदर है।
1: तो शौचालय जो यहाँ आप नजर आ रहे हैं कैसे?
2: सब ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर है।
1: आज ही आप यहाँ पहुँचे?
2: अभी पहुँचे ही है।
1: तो
2: अयोध्या जी श्री अयोध्या जी जहाँ राम जन्मभूमि है ना वहाँ से है।
1: तो मुझे बताओ आज या कल सवेरे आपको गुफा जाना है?
2: जी सवेरे गुफा 4 बजे निकलेंगे।
1: तो क्या मांगोगे बाबा भोलेनाथ से देश के लिए?
2: संत को क्या चाहिए प्रभु, संत सर्व को सभी को कल्याण मांगते हैं, सभी लोग सुखी रहे उसमें हम भी आ जाते हैं प्रभु।
1: मुझे बताओ ऐसी सुंदरता धरती पे कहीं देखने को मिल रही जो आज आप यहाँ दिख रहे हैं?
2: प्रभु जी हाँ, जो कुंभ के मेला इसके पहले लगा था, हम लोग 45 दिन ट्रेन पे हम नागा है
1: जी,
2: तो जी वहाँ अखाड़ा से है तो वहाँ वहाँ भी बहुत बहुत सुंदर था प्रभु, जो बहुत व्यवस्था किया था।
1: नहीं कश्मीर वाकई सुंदर है,
2: कश्मीर भी सुंदर है, ये तो यहाँ मत कश्मीर तो नाम है प्रभु जी, यहाँ तो हरा भरा है और सुंदर है।
1: तो व्यवस्थाएं कैसे लग रही
2: है? बहुत अच्छी है प्रभु, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
1: मुझे बताओ यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा?
2: अब यहाँ के आए हैं तो बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं प्रभु जी,
1: ये तो याद
2: मिल रहे हैं हमसे जो रास्ते मिल रहे हैं, बहुत अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं, इस प्रकार भाईचारा निभाना चाहिए, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं, प्रेम जितना भी बांटिएगा प्रेम बांटने से बढ़ता है, समझे ना, विद्या बांटने से बढ़ता है प्रभु।
1: मुझे बताइए यात्रा करने वाले एक धर्म के लोग हैं और करवाने वाले दूसरे धर्म के लोग हैं?
2: वो धर्म सब मानव मानव धर्म है प्रभु जी, जितने भी मानव हैं सब एक धर्म है, आपका खून मेरा खून नहीं है
1: जी,
2: अगर हमें तबियत खराब हो जाएगा तो खून की जरूरत पड़ेगा तो दोनों मिल जाएगा खून प्रभु जी, इसलिए हम सब एक है। यहाँ तो कुछ नेता लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं।
1: तो मुझे बताइए यहाँ की सुंदरता बरकरार रखने के लिए श्रद्धालुओं को आप क्या मैसेज देते हैं? सफाई सुथराई का किस
2: बढ़िया देते हैं, आपस में भाईचारा रखिए, आप सफाई कीजिए, एक दूसरे की जरूरत पड़े तो सहयोग कीजिए प्रभु, ये नहीं कि वो मुस्लिम है वो हिंदू है वो छात्री है, ये नहीं, सब भाईचारे बनिए।
1: तो जो हमारी व्यवस्था है उसको लेकर आप संतुष्ट?
2: बहुत बहुत संतुष्ट है प्रभु, बहुत संतुष्ट है,
1: धन्यवाद आप,
2: धन्यवाद।
1: यहाँ जो हमारे यात्री हैं वो व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, देश के विभिन्न भागों से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने आकाशवाणी को व्यवस्थाओं के बारे में मुतमईन का इजहार करते हुए कहा कि इस वर्ष जिला प्रशासन गांधरबल ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है जिसको लेकर वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इस बार हम ये कहना चाहते हैं कि बालतल मुखी मार्ग से हजारों की तादाद में हर रोज श्रद्धालु पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि जिले प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाएं इस साल उम्दा की गई हैं और वो इस पे मुतमईन हैं। इसके साथ साथ यात्रियों को सुरक्षा गुफा की तरफ पहुंचाने के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं और मानना इनका मानना है कि प्रशासन का यात्रियों की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, और हम भी आशा करते हैं कि ये जो श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा है ये अच्छे तरीके से संपूर्ण हो सके।
0: बहुत बहुत रिजवान साहब आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, ये थे बालताल से रहीम रिजवान।

0: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। जी हाँ, जो तो आपको बता दें कि यात्रा जारी है और यात्री आ रहे हैं दर्शन करके, और यहाँ से यात्रा जो है यात्री जा रहे हैं दर्शन के लिए, और सभी अपने विचारों का जो है अपने विचार जो है साझा कर रहे हैं और संतुष्ट है प्रशासन से जो सुविधा रखी गई है, प्रशासन ने जो सुविधा रखी है कितनी संतुष्ट हैं ये वो उनका अनुभव सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं इस एक बाइट में।
1: हम महाराष्ट्र से आए नागपुर से, जेएन की पुलिस अच्छे हमको मदद कर रहे हैं।
2: जय बाबा बर्फानी गूंजे हाथ मदद को है बड़े।
1: मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं अम्बाला कैंट हरियाणा से आई हूँ। कश्मीर पुलिस चारों तरफ अपने बिल्कुल तत्परता से काम कर रही है और सबका ध्यान रख रही है, किसी को भी कोई परेशानी हो वो तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सलाम।

0: बगैर डर भय का आए, ऐसा नजारा फिर और कहीं देखने को नहीं मिला
1: है।
0: यहाँ पुलिस की इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप सुरक्षा के दृष्टि से और भी किसी भी दिशा आपको किसी भी तरह से हेल्प की जरूरत होता हो, शारीरिक कोई कष्ट होता हो, यहाँ के पुलिस पूरा तत्पर रहते हैं, आपको हर सुविधा का ख्याल रखते हैं।
2: हमने जगह जगह पर जो है यात्रियों के फैसिलिटेशन के लिए पुलिस हेल्प डेस्क का गठन किया हुआ है। पूरे इलाके में 450 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास को एस्टेब्लिश किया गया है और उनकी मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम्स में हो रही है। एरियल सर्विलेंस के लिए 5 ड्रोन डेक्स हमने पूरे इलाके में रखे हुए हैं, जिनके जरिए हाईटेक ड्रोन्स सारे यात्रा परिसर को सर्विलेंस करते हैं। साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो संदिग्ध लोग होते हैं उन पर भी नज़र रख रहे हैं। मचान मोर्चास जो एक हाई राइज टॉवर्स है, ऐसे 28 मचान मोर्चे हमने पूरे इलाके में लगाए हैं, जिसपे स्पेशली ट्रेन जेंट के पुलिस के कमांडोज तैनात किए गए हैं।

0: जी हाँ श्रोताओ, आपने सुना होगा कि कैसे प्रसन्न हैं हमारे यात्रीज़ प्रशासन की सुविधाओं से, कैसे वो तारीफ़ें करते रहते हैं प्रशासन से। और हमारे जो J&K के पुलिस हैं, उन्होंने आपने सुना होगा उन्होंने कितनी सुविधाएं रखी है प्रशासन द्वारा, जो है हमारे यात्रीज़ हैं लाभ उठा रहे हैं सभी सुविधाओं को और अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी कहेंगे, जहाँ पे यात्रीज़ हमारे यात्रा के लिए जा रहे हैं या दर्शन के लिए आ रहे हैं, वहाँ भी कुछ जो है कुछ क्षेत्रों से साधुज़ भी आ रहे हैं, वो अपना जो है शेयर कर रहे हैं अपनी रूहानियत श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए, और क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं।
1: शिव के दीवाने हर हर महादेव गाते।
2: कश्मीरी लोगों के बिना ये यात्रा पॉसिबल नहीं है।
1: बर्फानी बाबा के दर्शन को साधु संत सब आते।
2: मैं महंत दिनेशानंद गिरी, मेरा मठ मध्य प्रदेश मऊगंज जिला है, बाबा की कृपा से ही मैं आ रहा हूँ।
1: साधु बता दो कहाँ प्रेम नगर है।
2: और बाबा जिस तरह से माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ की रचना किया, और आज संसार इसका लाभ ले रहा है, इसलिए इनकी कृपा का कोई बखान नहीं किया जा सकता।
1: ना ऊंच नीच ना बैर वहाँ है।
3: मेरा नाम नीलमणि सिंह है, मैं असम से आया हूँ, मणिपुर बॉर्डर से। करम ही सबसे बड़ा साधु है, वही हमारा गुरुजी ने बताया और हम वही सोच कर अभी भी चल रहा है गुरु के पीछे पीछे। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हर हर बोले नमो शिवाय।
4: शिव मोहन राज और हमारा नाम गाँव तो रामेश्वर से, तमिलनाडु से आ रहे, छोटे बड़े लोग आ रहे, बूढ़ा लोग भी आ रहे, ये इतने आना जाना के लिए बहुत तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया कर रहा है, ये सेवा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हम लोग बहुत खुशी हो रहे हैं।
2: जहाँ भी मैं गया, मुझे कोई तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, तो श्राइन बोर्ड मेरी बराबर सुना, मेरी व्यवस्था किया, मेरे आदमी लोग बीमार हुए उनकी दवाई हुई, सारा कुछ जो कुछ हुआ सब विधिवत हुआ।
0: तो श्रोताओं, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सभी यात्रीज़ बहुत ही खुश है जो है प्रशासन द्वारा जो उन्होंने इंतज़ाम किए हैं उनसे बहुत ही खुश है। यहाँ आपने पुलिस को भी सुना होगा कि किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है यात्रीज़ के लिए है। तो यही हम कहेंगे कि अपनी यात्रा को जारी रखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा जो है हमारे जो है सुरक्षा कर्मचारी, उनकी कड़ी सुरक्षा में ये आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी सुविधा प्रशासन ने रखी है उनका लाभ उठाते ये बम बम बोली का जॉब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपके लिए उपस्थित रहते हैं। श्रोताओ, आपको बता दे, आज प्रातः जो है 12वें जत्थे को घाटी की और रवाना कर दिया गया, तो आज 7,754 तीर्थ यात्रियों को घाटी की और रवाना कर दिया गया जम्मू बेस कैंप से। जी हाँ, जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से, जिनमें पुरुषों की संख्या रही है 5,383, महिलाएं 2,071, बालक 16, साधु 222, साध्वी 58 और ट्रांसजेंडर 4। इस तरह से कुल मिलाकर आज जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 7,754 तीर्थ यात्रियों को 303 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया। बालतल मार्ग की बात करें तो बालतल मार्ग से जो है 2,896 तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया 133 छोटे बड़े वाहनों में, जिनमें पुरुषों की संख्या रही है 1,780, महिलाएं 1,050, बालक 9, साधु 51, साध्वी 2 और ट्रांसजेंडर 4। और प्राचीन मार्ग की बात करें, पहलगाम प्राचीन मार्ग की 4,858 तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया इस मार्ग से 170 छोटे बड़े वाहनों में। संख्या पुरुषों की 3,603, महिलाएं 1,021, बालक 7, साधु 171, साध्वी 56 और इस तरह जो है संख्या रही है 4,858 तीर्थ यात्रियों को पहलगाम प्राचीन मार्ग से रवाना कर दिया गया 170 वाहनों में। इस तरह से कुल मिलाकर जो है टोटल रहा है आज सुबह जो है दोनों मार्गों से तीर्थ यात्रियों को रवाना कर दिया गया है, संख्या रही है 7,754 तीर्थ यात्रियों को 303 छोटे बड़े वाहनों में जो है रवाना कर दिया गया है दोनों मार्गों से। तो अभी जो हमें हमारे पास जो अपडेट आया है, दर्शन अपडेट आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 4 बजे तक 22,884 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं, संख्या रही है 16,088 जो है पुरुषों की संख्या, 6,082 महिलाएं, बालक 267, साधु 170, साध्वी 15, ट्रांसजेंडर 7 और सुरक्षा कर्मचारी 255। इस तरह टोटल रहा है, यानी कि कुल संख्या रही है 22,884 तीर्थ यात्रियों ने 4 बजे तक जो है बाबा भोलेनाथ के द्वार पर माथा टेका है। तो हमारी यही मनोकामना है सभी तीर्थ यात्रियों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।

विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं एफएम बालतल और एफएम पहलगाम के संग। श्रोतो, आपको बता दें कि किसी भी पवित्र यात्रा की सफलता सिर्फ उसके गंतव्य तक पहुंचने में नहीं होती, बल्कि उस व्यवस्था में होती है जो हर कदम पर श्रद्धालुओं को सहारा देती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इसका एक जिंदा उदाहरण है। हर साल जब लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हिमालय की ओर बढ़ते हैं, तब उनके साथ साथ हजारों हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के सेवा में जुट जाते हैं। यही सेवा भाव इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। लंगर सेवा निष्काम सेवा का जीवंत रूप है। यात्रा का दोनों मार्गों पहलगाम और बालतर पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा निःशुल्क लंगर चलाया जाते हैं। जी हाँ, सुबह की गर्म चाय से लेकर पौष्टिक भोजन तक हर लंगर में एक ही भाव नजर आता है, यात्री ही भगवान का रूप है। ये सेवा किसी शुल्क के बिना किसी भेदभाव के और पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। कई सेवादार महीनों पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। पहाड़ी यात्रा के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, इसलिए यात्रा मार्ग पर पीने के पानी की व्यवस्था कई स्थानों पर की गई है। साफ पीने का पानी, जल वितरण केंद्र और अन्य आवश्यक सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध रहती हैं। श्रोताओं, इसके साथ साथ ही स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया गया है। निर्धारित स्थानों पर मोबाइल टॉयलेट, सैनिटेशन टीम्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की व्यवस्था की जाती है। श्रोताओं,

ये हिमालय हमारे लिए धरोहर है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें। बिल्कुल ही, या यूं भी कह सकते हैं, कम से कम नहीं, ना ही करें तो बेहतर रहेगा। कचरा इधर उधर ना फेंकें और प्रकृति की पवित्रता बनाए रखें। ये केवल प्रशासन का नहीं, हम सब का कर्तव्य है। यात्रा के दौरान अक्सर देखने को मिलता है कि स्थानीय लोग जो है मुस्कुराहट के साथ यात्रियों का स्वागत करते हैं। कई जगह लोग पानी पिलाते हैं, कई चाय का इंतज़ाम होता है, तो कई सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कान ही यात्री की थकान दूर कर देती है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब आस्था और अपनापन एक साथ चल पड़ते हैं, तब यात्रा और भी पवित्र बन जाती है।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं FM पहलगाम 100.1 MHz पर, FM बालतल 103.7 MHz पर। DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एयर के मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेब OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। 4 बजे का अपडेट एक बार फिर आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 4 बजे तक जो है 22,884 तीर्थ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त किए हैं। पुरुषों की संख्या है 16,088, महिलाएँ 6,082, बालक 2,267, साधु 170, साध्वी 15, ट्रांसजेंडर 7 और सुरक्षा कर्मचारी 255। ऐसे कुल मिलाकर अगर हम बात करें 4 बजे तक, आज 4 बजे तक 22,884 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाए हैं। तो यात्रा जारी है। यात्रा हम भी चाहते हैं कि सभी यात्रियों पर जो है बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और यात्रा जो है सुखद तरीके से शांतपूर्ण चलती रहे, जारी रहे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करके सभी यात्री जो है अपने क्षेत्रों के और सफलता से पहुँचे। तो आपको बता दें, आप जुड़े हुए हैं विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के संग, जो आप समाप्त कर रहे हैं FM बालतल और FM पहलगाम के संग। जी हाँ, कुछ ही क्षणों में आप और हम एक साथ बालतल में रिकॉर्ड की गई आरती का आनंद लेते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्रोताओ, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ 5 बजे का अपडेट जो है साझा करना चाहेंगे। 30,850 तीर्थ यात्रियों ने 5 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। 16,754 जो है पुरुषों की संख्या रही है, 6,340 महिलाएं, बालक 285, साधु 179, साध्वी 18, ट्रांसजेंडर 7 और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है 267, ऐसे कुल संख्या है 23,850। इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में मैं आपकी साथ ही उद्घोषक शाहिना ऋषि, और इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बालतल में हमारे साथ ही इंजीनियर इरशाद अहमद लोन, जावेद अहमद लोन और मोहम्मद सलीम। इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक और श्री गुलाम रसूल आखून। यात्रा का विशेष प्रसारण लिए हम आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

परांबा त्रैलोक्यनी अधिष्ठात्री महाशक्ती भगवती दुर्गा अनु नाम लेता अनु ध्यान मंत्र उपासको ना हृदय आ रीते स्फुरित थाय छे। मंत्र श्लोक

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम,
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।